के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
9: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
10: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
11: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
10: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
11: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
10: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
11: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
10: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
11: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
8: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन ऐं पेंजे इश्तियार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
8: जी हाँ, 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मुल्कन सा ताल्लुक रखंदड़ शागिर्दन जे वफ़द जी मुलाकात, पाकिस्तान जे सिक्योरिटी मामलन जे खिते, दुनिया में अमुन इस्तेकाम ऐं खुशहाली खे हथी वठण लाइ कयल कोशिशन ते ख्यालन जी ॾेवट कई वई। ISPR मौजूद फील्ड मार्शल से दासिम मुनीर नौजवानन जी तालीम, हुनर, सिख्या, कारोबारी सलाहियतन ऐं हक़ीक़तन ते बदल तजज़ियाती सोच जी अहमियत ते ज़ोर ॾिनो। फील्ड मार्शल से दासिम मुनीर चयो आहे त तेज़ी सां तब्दील थींदड़ गैर यकीनी सूरतयाल वारी दुनिया में नौजवाननि खे सोशल मीडिया जे असरनि खे समझंदे मुस्बत ऐं बा मक़सद किरदार अदा करणु घुर्जे।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द

0: ഓരത്തിന്റെ ബീമാരിന്റെ മാഹിർ ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ അതീക സയ്യിദ്
1: റോസാനു സുബുജോ ഡേഹ ഖാ റാത് ജോ ഡേ ബജേ തായി മരീസൻ ജോ ഇലാജ് കണ്ടി
0: ഔലാദ ജോ നതിയാണ് औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
3: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
6: 90.4
7: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
8: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
8: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 03125252786
8: जी हा 2315525786
7: GFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़

0: अक्सर माण्हू जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे, त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान, तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, भुख न लॻण या बदहज़मी जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सिहतमंद मैदो सिहतमंद ज़िंदगी।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी जिंदगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, क्यों रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे। जख्म तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।

एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जबी भाई टेक वन। कहाँ तो ना माफ कीजिएगा, शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप। जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर। गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं इसमत चुकताई, कैसे किस्मत खुल आई, आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट। जिब बादशाह दे बैद तमाशा, मैं तो मेरा इंस्टिंक्ट एनिमलिस्टिक, मैड मैजिशियन या मैथमेटिशियन, आई नेवर टेक सेकंड पोजीशन, आई एम गेटिंग बैलिस्टिक, कैटेगरिज्मिक, बिल्कुल असली, देखो मेटिकुलसली, दस मेरे मेडिसिनल से, लव किया मैंने कलम से, सच बोला मैंने कसम से, रंग देखो कैसे बदलते, दिखते हैं सबके, करते कब से, बातें पक्की, बातें कच्चे, I've had enough of it, but I keep going, got no option but to keep flowing, keep the tight trick out of my zone, ducking the sheriff up, knee off of my throne, but before I gotta go, let me tell you this. One thing I need you to know, if you ever need a friend, you can call my phone, 'cause you are not alone. You are not alone.

0: करते रहे।
1: कुछ मैं कह दूं
0: घर था वीरान मेरा और हम अकेले ही जलते रहे। भले ये शाम अब दिन चले चलो रोशनी की सिर्फ चले अपनी रात पे यकीन मेरा अजाए मुझे ये यकीन करे हकीम है कल।

0: ये कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां सऊदीअ जे माहौलियात बाबति वज़ीर इंजीनियर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मोहसिन जी मुलाक़ात बि तरफ़ लाॻापन समेत मुख़्तलिफ़ शुबनि में सहकार ते ॻाल्हियूं। शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाक सऊदी ऐं तुर्किया में थियल मका मुआदे में ॿई मुल्क वधीक वेझो आया आहिनि। मुआदे सां खिते में बि अमुन ऐं इतिहाद जो पैगाम वियो आहे। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब इस्टर जे भाईवार आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि खे हाणे इक़्तसादी ऐं ज़रई शोबे में सहकार वधाइण घुर्जे। वज़ीर आज़म ज़रई माहिरनि जे वफ़द बि सऊदी मोकिलण जो ऐलान कयो।

आज़ाद कश्मीर जे नए वज़ीर आज़म जे चूंड अॼु थींदी। कानून साज़ असेंबली जो इजलास अॼु थींदो। नून लीग पारां बेरेट सैयद इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म तौर नामज़द। नून लीग आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म जे नाले ते इख़्तिलाफ़ बरक़रार। कुझु मेंबर्स खे बेरेस्टर सैयद इफ्तिखार गिलानीअ ते ख़दशा आहिनि।

0: कराची जे वापारी मीरज़ा केस जी अदालती कमीशन जांच शुरू करे छी। मीरज़ा जा घर भाती वकील जबरान नासिर कमीशन आरो पेश। मीरज़ा जे वालिद केस जी जांच ते बेतमादी जाहिर करे छी। केस जी जांच कंदड़ कमीशन जे सरबराह जस्टिस उमर सयाल चयो आहे त जेको कुझु थींदो सभिनी जे साम्हूं थींदो। इंक्वायरी ऐं इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क़ आहे। इन्वेस्टिगेशन न कमीशन करे सघे थो, न वरी वॾो वज़ीर। अवां जी दरख़्वास्त जो कमीशन सां तालुक नाहे। अदालती कमीशन खे रिवायती अंदाज़ में न हलाईंदासीं। कमीशन अवां जे समूरनि सवालनि जा जवाब ॻोल्हण जी कोशिश कई वेंदी।
1: खानपुर वेझो मज़दा जो मोटरसाइकिल खे टकर। हादसे सबब चार ॼणा फौत, हिकु ज़ख़्मी। फौतन में खानचंद पुट रामचंद हाकिम, पुट शेरदल ओड संदस पुट रमेश ऐं भाइटियो सोणो ओड शामिल आहिनि। फौतन जा लाश ऐं ज़ख़्मीनि खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। पुलिस मज़दा ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे वरितो।
0: कोटनी जी भरिसां कार्गो लोडर रक्षा वाह में किरण सबब ॿुॾी वियल टिन ॿारनि जी ॻोल्हा जारी। ॿुॾी वियलनि मां रुॻो ॾह वरनि जे ॿारे लाहौती जो लाश हथ, 12 सालनि जो मीर मोहम्मद, 11 सालनि जो मुंतज़िर ऐं 13 सालनि जो जुनेद गोपांग जी ॻोल्हा जारी। गुज़िरियल ॾींहं मीरवाह केनाल लिंक रोड तां कार्गो लोडर कंट्रोल मां निकिरी वाह में किरी पियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर इहो सबबु न बणंदो।
3: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: आख़िर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
9: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
10: त
7: पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
7: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ ए मातली बदीन
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 0331252576
7: जी हा 2315525786
9: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

मुस्कुराए दिल के चुराए तू मुस्कुराए दिल के चुराए हलियो वे अखड़ियों मिलाए जल्द लिकाए हलियो वे तू दिल तू मुस्कुराए दिल के चुराए हलियो वे अखड़ियों मिलाए जल्द लिकाए हलियो वे जड़े दिसण जी मुंह कई कोशिश लिखी वे जड़े दिसण जी मुंह कई कोशिश लिखी वे मुझे सुकून तू ही फिटाए हलियो वे तुझे हुस्न रंद के समझी नथो सका तुझे हुस्न रंद के समझी नथो सका मुर्की अखियों अखियों सा मिलाए हलियो वे।

त मुंहिंजा मिठा साईं जेके बि मूंखे हिन वक़्तु ॿुधी रहिया आहियो त तव्हांखे मां ॿुधायां जीअं मोरो एफएम एटीन जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर जुमे जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं हींअर कयो वेंदो आहे जंहिंमें हूंदियूं आहिनि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं अवां पारां मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजिस। अच्छा हाणे मैसेज करण जो तरीक़ेकार ॾाढो सवलो अथव, आसान अथव। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, ए मारो लिखो स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहां 888-1 ते। छा ते मोकिलींदा? 888-1 ते। हुन ते लिखी करे मोकिलींदा, मूंखे तव्हांजे मैसेज जो बि इंतज़ारु रहंदो। त मुंहिंजा मिठा चवंदा आहिनि त ज़िंदगी किराए जो घर आहे। असां हिन दुनिया में अहिड़ी तरह ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहियूं ॼण त हमेशा हिते रहणो हुजे, हालांकि हक़ीक़त उहा न आहे। हक़ीक़त हिन दुनिया में असांजो क़याम रुगो कुझु ॾींहनि जो आहे। नंढपिण खां वठी जवानी, जवानी खां पोइ पोढ़ाइप, ऐं पोइ वरी हिकु ॾींहुं ख़ामोशीअ सां हिन दुनिया मां मोकिलाए वञणो आहे। ज़िंदगी जो सफ़र बसि एतिरो ई अथव। पोइ ताक़त, गुरूर, दौलत, ख़ूबसूरती, दुनियावी मसरूफ़ियातूं आख़िर कहिड़े कम जूं आहिनि? जिस्म जंहिं ते अॼु असां नाज़ करे रहिया आहियूं, हिकु ॾींहुं उहो कमज़ोर थी वेंदो। जंहिं माल खे गॾु करण में असां पंहिंजी सॼी ज़िंदगी लॻाए छॾी आहे न, उहो सभु कुझु हिते ई रहिजी वेंदो। ऐं जिन माण्हुनि ख़ातिर असां पंहिंजे रब खे नाराज़ कयो, उहे बि हिकु ॾींहुं असांखे छॾे हलिया वेंदा। वक़्तु वापसि नथो अची सघे, पर तौबनि जा दरवाज़ा अञा बि खुलियल आहिनि। अॼु जुमे जो भलारो ॾींहुं आहे, हुन जे करे जेतिरी तौबा थी सघे ओतिरी करणु घुर्जे। अॼु बि मौको तव्हां वटि मौजूदु आहे, असां पंहिंजी ज़िंदगी जो रुख बदिलाए सघूं था। निवास खे मज़बूती सां करियो, क़ुरान पाक खे साउन सां पंहिंजो तालुक खे जोड़े छॾियो, जेके वालदेन आहिनि उन्हनि जी क़दुरु करियो, माण्हुनि जा हक़ अदा करियो, दिलनि मां गुरूर तकबुर कढी छॾियो, ऐं अल्लाह ताला सां पंहिंजे तालुक वधीक मज़बूत करियो। यादि रखो, हीअ दुनिया मंज़िल न आहे, रुगो हिकु रस्तो आहे। छा? हीअ दुनिया मंज़िल न आहे, रुगो हिकु रस्तो आहे। असल कामयाबी उहा न आहे त असां दुनिया में केतिरो कमायो, केतिरी दौलत गॾु कई या केतिरी शोहरत हासिल कई। असल कामयाबी उहा आहे त जेकॾहिं असां हिन दुनिया मां वञूं, तॾहिं असांजो रब असां सां राज़ी हुजे। हिकु ॾींहुं अहिड़ो ज़रूरु ईंदो जॾहिं न मोबाइल हूंदो, न पैसो हूंदो, न कारोबार हूंदो, न शोहरत हूंदी, न नालो हूंदो, न दोस्त हूंदा, न मिट हूंदा, न माइट हूंदा, केर बि न हूंदो, सिर्फ़ माण्हू अकेलो हूंदो ऐं असांजा अमल असां सां गॾु हूंदा। तंहिं करे उन खां अॻु जो ज़िंदगी जो ही जेको सफ़र आहे न उहो ख़तम थी वञे, पंहिंजे रब सां तालुक मज़बूत कर

अलाह ही हलाक किया करो, दुख न किसी को दिया करो। इो मैसेज है, इन अमल करो। इंशाल्लाह ताला तवां पांजी जिंदगी कामयाबी से गुजारिंदा। दोस्तों कुछ मैसेजेस आन वे भी पांजे प्रोग्राम में शामिल कंदा। हलो गुरदूरो भेण का शौकत अली भेण जो पैरो पैरो मैसेज पांजे प्रोग्राम में आयो है। अदा सा गड है नादर अली भेण, अली गुल भेण चवंदा अदा गुलाब सलाम। वालेकुम सलाम मुझा मिठा ताजन चवंदा शाहिद बाबा जो कलाम बुधायो तो हाजिर मुझा मिठा साई तहां जो पैरो मैसेज अस प्रोग्राम में आयो है। जरूर तहां के शाहिद बाबा के आवाज में कलाम बुधाइंदुस इहा हाँ गारंटी समझो। जुल्फकार भेण जो है उनसा गदा है डेडिकेट करे थो जुल्फकार भेण के जरियाब भेण रियाज अली भेण के वही मेहरबानी मुझे मिठा सही तुम प्रोग्राम में शामिल चाहो तख कुर्ब लख एहसान तै खोड़ सारी मोहब्बतू खोड़ सारो प्यार है। गोठ हाजी दलेल जरदारी खां सावर खान जरदारी पंजे प्रोग्राम बुध भी चवे तो सर सलाम। तो वालेकुम सलाम जरदारी साहब, कड़ा हाल है नवाजा? ठीक है तबियत सही है अवा जी। अदाजन चवन था ममताज लाशारी जी कलाम असा बुधा था। ममताज लाशारी जो मुझी प्ले लिस्ट में ढो जबरदस्त सॉन्ग है, इंतजार कजो जरूर बुधजो उनके ताो इंशाला पसंद अची वो। डेडिकेट करे तो भूरो खान लाखो गुलाम सरवर बागाई के अदा। भूरो खान लाखो असो पुरानो लिसनर है बेहतरीन, गुलाम सरवर बागाई भी इन ही सागे तरीके से असा लिसनर आन। वही मेहरबानी तवाजी मुझा मिठा सही तसाज प्रोग्राम में शामिल थे। गोठ हाजी गुलाम की खास कड़ी लग जींदो मोरिये खां कुर्बान की खास कड़ी बुधे पे अदा। कुर्बान कड़ा हाल तवाजा? मैं कुर्बान वजा तो खुश रही तैयार रही तबियत सही थी उम्मीद है अल्लाह ताला तो दहां भी बिल्कुल खैर खैरियत कई होंगी। गोठ

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएं।

0: औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
3: खुशख़बरी, खुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
1: जी हा, 2331-25-25-786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

नकर तू याद गेरन के गमन के किए झले छजे नगर तू याद गेरन के गमन के किए झले छजे न रोए तू बेवफा जे लाए अखिन के किए झले छजे अचे आराम तो जिन के प्रिय जे नाम सा दमदम अचे आराम तो जिन के प्रिय जे नाम सा दमदम उन्हन अज बेसहारन ई दुखन के किए झले छजे दिसो अज चोट ते भी सदिन था सू हवारन के ॾिसो अॼु चोट ते बि ई सॾिन था सूं वारनि खे पुकारनि था उथी सिक मां चपनि खे कीअं झले छॾिजे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी मुंहिंजनि मिठनि प्यारनि दोस्तनि ॿाहिरनि ऐं प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती में भली कहा त जिन जिन दोस्तनि हाणे हाणे असांखे न जॉइन कयो आहे जिन हाणे पंहिंजो रेडियो सेट ऑन कयो आहे त ऐं पहिरियों दफ़ो असांखे ॿुधी रहिया आहिनि त हुनखे असां ॿुधाईंदा हलूं त तव्हां ॿुधी रहिया आहियो जी एफ एम नेटवर्क ऐं हीउ प्रोग्राम आहे म्यूज़िक मस्ती ऐं जेको जी एफ एम नेटवर्क जे समूरनि स्टेशन हूंदा हिकु ई वक़्तु ऑन एयर कयो पियो वञे ऐं प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती सां गॾु मां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान गुलाब खान भेण त हीउ प्रोग्राम हफ़्तेवार प्रोग्राम हूंदो आहे हर जुमे जे ॾींहुं यारहें वॻे खां वठी हिकु वॻे ताईं ऑन एयर कयो वेंदो आहे जंहिं में हूंदियूं आहिनि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं अव्हां जा मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजिस ऐं उन खां अलावा तव्हां जे पसंद जी चूंड मौसीकी त दोस्तनि जा कुझु मैसेजिस आहिनि उहे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं महबूब अली पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो मोरो शहर खां अदा महबूब साईं कहिड़ा हाल अथई ठीकु आहीं तबियत सही आहे तुंहिंजी उमेद अलाह ताला तोॾे ख़ैरियत कई हूंदी ऐं मोरो खां तव्हां असांखे ॿुधी रहिया आहियो उन जे लाइ खोड़ सारियूं खोड़ दफ़ा तव्हांखे मां भली कार चवां थो

त असां सां गॾु आहे पडीदन खां अस्मा। अस्मा, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो, तबियत सही आहे अव्हांजी? पुराणियूं लिसनर्स आहियो असांजूं ऐं तव्हां मुंहिंजे शो में शामिल थींदा आहियो। मुंहिंजी तरफ़ खां स्पेशली तव्हांखे हिकु न, ॿ न, टे न, चार न, पंज दफ़ा भलीकार, बल्कि पूरे हफ़्ते जे लाइ भलीकार, सत दफ़ा भलीकार। ऐं अस्मा चवे थी त सर, शो बहुत अच्छा है आपका, महिरबानी, तव्हां असांजे शो खे पसंदि करे रहिया आहियो ऐं अहिड़े तरीक़े सां तव्हां असां सां जुड़ियल रहो। ऐं उमेद आहे त इन खां वधीक अञा जी एफ एम नेटवर्क ते तव्हांखे शो ॿुधण जे लाइ मिली वेंदा। घोट उमेद अली दरदारी खां गुलाम सरवर बाघा ई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, चवे थो सर सलाम। वालेकुम असलाम, अलाह कंदव, ख़ुशि हूंदव। जी हा, बिल्कुलु, अलाह जी महिरबानी आहे, रब करीम जा लख लख अहसान आहिनि, किरोड़े करम आहिनि। मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां ऐं अदा डेडिकेट करे थो सॉन्ग जेको आहे न, उहो अदे भूरे इलाइक़े खे ऐं आजिज़ा माण्हू लाइ सिड़ो खे। महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो, तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि, तव्हांजो प्यार आहे। रोड़ी सकर खां नज़ीर अहमद मंगरियो पाण खे ॿुधी रहियो आहे। अदा रोड़ी वारा भाउ, कहिड़ा हालनि तव्हांजा? ठीकु आहियो, तबियत सही आहे अव्हांजी? ऐं उमेद आहे त अल्ला ताला तव्हांजे ख़ैरियत कई हूंदी। हफ़ीज़ सोलंगी प्रोग्राम मोरो खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे। अदा हफ़ीज़, कहिड़ा हाल अथई? ठीकु आहे पुट। ऐं चवे थो अदा सलाम, मां काफ़ी टाइम से एफ एम सुनता हूं, मगर एस एम एस पहली बार कर रहा हूं। मेरे तरफ से आपको और आपके पूरी टीम को और सब अपने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। जी हाँ अदा, वालेकुम असलाम। तव्हां असांजा पुराणा लिसनर रहियो, पर मैसेज तव्हां पहिरियों दफ़ो कयो, अदाफ़िस मैसेज कंदा कयो, शामिल थींदा कयो। इन सां छा थींदो आहे त हिकु त जेको प्रोग्राम कंदड़ आरजे हूंदो आहे उनखे ख़बर पवंदी आहे त मूंखे कहिड़ा दोस्त किथां खां ॿुधी रहिया आहिनि ऐं कहिड़े तरीक़े सां ॿुधी रहिया आहिनि ऐं केतिरो असांजे हिन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कनि था। उन खां अलावा ॿी ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त तव्हांजी ख़ुदि जी सुञाणप बि थींदी आहे। तव्हां पंहिंजा जेके बि असांजा लिसनर्स हूंदा आहिनि न, तव्हां इहो न सोचो त सिर्फ़ असांखे मोरो ॿुधी रहियो आहे, हिन वक़्तु असांखे पूरी सिंध ॿुधी रही आहे, पूरी दुनिया में किथे बि जेको आहे न माण्हू असांखे असांजी वेबसाइट जे ज़रिए ॿुधी रहिया आहिनि। त उन्हनि सभिनी में हफ़ीज़ अहमद सोलंगी फ्राम मोरो उनजो नालो ओसोड़ी पहुचे थो, इन जे करे तव्हां प्रोग्रामनि में शामिल थींदा कयो। तव्हांखे मुंहिंजे तरफ़ खां 10 दफ़ा भलीकार। ठीकु आहे, ऐं अदा जन चवंदा त असांखे फौजिया सूमर जो कलाम ॿुधायो, त हाज़ुर फौजिया सूमर खे ज़रूर पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। त मुंहिंजा मिठा साईं, मोहबत दुनिया जो उहो ख़ूबसूरत अहसास आहे न जेको इंसान जे दिलि खे बदिलाए छॾींदो आहे। छा मोहबत दुनिया जो उहो ख़ूबसूरत अहसास आहे जेको इंसान जे दिलि खे बदिलाए छॾींदो आहे? जॾहिं कंहिं शख़्स सां सची मोहबत थी वञे थी न, त उन जी ख़ुशी पंहिंजी ख़ुशी महसूस थींदी आहे, उन जो ॾुख पंहिंजो ॾुख लॻंदो आहे, ऐं उन जी मुस्कुराहट बि पंहिंजी मुस्कुराहट लॻंदी आहे। उन जी मुस्कुराहट ज़िंदगी जी सभ खां वॾी ख़ुशी बणजी वेंदी आहे। सची मोहबत इंसान खे ख़ुदगर्ज़ीअ खां कढी क़ुर्बानीअ जी राह ते आणे बीहारींदी आहे। कंहिं शख़्स जी मोहबत में पाण सदको करण जो मतिलब उहो न आहे त इंसान पंहिंजे वजूद, इज़त या ज़िंदगी खे ख़तमु करे छॾे, न मुंहिंजा जानी। उन जो असल मतिलब उहो आहे त पंहिंजे महबूब जे ख़ुशी, इज़त ऐं सुकून जे लाइ पंहिंजी अना ज़िद ज़ाती ख़्वाहिश मां कुझु क़ुर्बान करण ऐं मोहबत में मान जी जाइ ते असी न, मोहबत में मां जेका असां चवंदा आहियूं उन जी जाइ ते असी अची वञे त रिश्तो वधीक ख़ूबसूरत बणजी वेंदो आहे। मोहबत में क़ुर्बानी ॾियणु हिकु वॾी ख़ूबी हूंदी आहे, पर उहा क़ुर्बानी ॿिन्ही तरफ़नि खां हुअणु घुरिजे। जेकॾहिं हिकु माण्हू हर वक़्तु ॾिए ऐं ॿियो रुॻो वठंदो रहे, त उहा मोहबत आहिस्ता आहिस्ता हिकु तरफ़ी वाबस्तगी बणजी वेंदी आहे। सची मोहबत में ख़्यालु, इज़त, वफ़ादारी, क़ुर्बानी ऐं ॿिन्ही तरफ़नि खां हुजणु तमामु घणो ज़रूरी हूंदी आहे। मोहबत इंसान खे मज़बूत बनाए थी, कमज़ोर नथी करे। जेकॾहिं कंहिंजी मोहबत तव्हांखे पंहिंजी ज़ात खां नफ़रत करणु, पंहिंजे ख़्वाबनि खे दफ़न करणु या हर वक़्तु ॾुख बर्दाश्त करण ते मजबूर करे थी न, त उते मोहबत सां गॾु सोचण जी ज़रूरत आहे, छो त सची मोहबत में क़ुर्बानी ज़रूरी हूंदी आहे, पर पाण खे विञाए छॾणु ज़रूरी नाहे हूंदो। रऊफ़ मक्सीअ जो ॾाढो हिकिड़ो ख़ूबसूरत सॉन्ग मुंहिंजे प्ले लिस्ट में मौजूदु आहे, अचो त उनखे इंजॉय कयूं।

0: दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

प्रोग्राम में दोस्तनि मैसेजिस बि गॾु गॾु शामिल कंदा हलंदासीं। तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीकी बि ॿुधाईंदासीं। तव्हां सां मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं बि असांजो जारी वसारी रहंदो। पने अकल खां साईं इमदाद अली शाह असां सां गॾु आहे। साईं मुंहिंजा कहिड़ा हाल अथव? ठीकु आहियो? तबियत सही आहे तव्हांजी? तव्हां ख़ुशि आहियो? घर वारा तव्हांजा सभु ख़ुशि आहिनि? दोस्त यार पाड़े ओड़े वारा बि तव्हांजा ठीकु आहिनि? उमेद आहे अलाह ताला सभिनी ॾांहुं ख़ैरियत कई हूंदी। अदा जन चवंदा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा भाउ। चवंदा भाईजान आपका प्रोग्राम नाइस है, महिरबानी अदा, तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम खे पसंदि कयो था। ममताज़ मोलाई जे आवाज़ में अदा जन चयो आहे त असांखे कलाम ॿुधायो। ऐं शौक नवाबी शायदि बोल हुन जा इन आहिनि ऐं डेडिकेट करे थो ताहिर लुड ऐं रियाज़ चिस्काणी खे। त महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। लख कुर्ब लख अहसान अव्हां जा। ॻोठ दूरो भेण खां शौकत अली भेण ऐं नादिर अली भेण जो ॿियो मैसेज असांजे प्रोग्राम में आयो आहे। ऐं अदा जन शाहिद बबर जे कलाम जी फरमाइश कई आहे। डेडिकेट कंदा ज़ुल्फ़िकार अली भेण, ज़रियाब भेण खे ऐं रियाज़ अली भेण खे। वॾी महिरबानी मुंहिंजा मिठा, तव्हांजो ही ॿियो मुंहिंजे प्रोग्राम में मैसेज आहे। उन जे लाइ लख कुर्ब अव्हां जा, लख अहसान अव्हां जा, ऐं स्पेशली मुंहिंजी तरफ़ खां तव्हांखे मां भलीकार चवां थो। त मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां असांजे शो में शामिल थी सघो था बज़रे SMS। SMS करण जो तरीक़ेकार सवलो आसान। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं मारो लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888 1 ते।

0: Defense Forces.
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: बामकसद किरदार अदा करण घुर्जे। मुलाकात कंदड़ शागिर्दन में मुख्तलिफ़ मुल्कन सां ताल्लुक रखंदड़ शागिर्द शामिल हुआ। इस्लामाबाद जे पिम्स में पेश आयल साने की जांच जारी। वज़ीर आज़म पारां जुड़ियल कमेटी पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बेन जा बयान कलमबंद कर वरता। पोती बारन के वारसन का भी बयान वरता व्या। जांच कमेटी वज़ीर आज़म के अज छुराती रिपोर्ट पेश कंदी। आजाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म की चूंड अज थी। नून लीग के नामजद वज़ीर आज़म बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गिलानी आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तौर नामजदगी फार्म जमा कराए छी। नून लीग आजाद कश्मीर में वज़ीर आज़म नाले इख्तिलाफ़ बरकरार। कुछ मेंबर्स के बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गिलानी से खदशा आया।

0: कराचीअ जे वापारी मीर रज़ा खे सॼे अदालती कमीशन जांच शुरू करे छॾी। मीर रज़ा जा घर भाती ऐं वकील जिब्रान नासिर कमीशन आॾो पेश। मीर रज़ा जे वालिद केस जे जात ते बेतमादी ज़ाहिर करे छॾी। केस जी जांच कंदड़ कमीशन जे सरबराह जस्टिस उमर सियाल चयो आहे त जेको कुझु थींदो सभिनी जे साम्हूं थींदो। इंक्वायरी ऐं इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क़ु आहे। इन्वेस्टिगेशन न कमीशन करे सघे थो न वॾो वज़ीर। अवां जी दरख़्वास्त कमीशन सां तालुक़ु न आहे। अदालती कमीशन खे रवायती अंदाज़ में न हलाईंदासीं। कमीशन अवां जे समूरनि सवालनि जा जवाब ॻोल्हण जी कोशिश कई वेंदी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां एफ़सी ट्रेनिंग सेंटर शबद जो दौरो, एंटी रायट विंग जे ख़ुसूसी तरबियती मशक़नि जो जाइज़ो वरितो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी अहलकारनि जे पेशाण सलाहियतुनि, जदीद तरबियत ऐं ऑपरेशनल तयारियुनि जी साराह कई। खानपुर वेझो मज़दा जो मोटरसाइकिल खे टकर, हादसे सबबि चार मुसाफ़िर फोत, हिकु ज़ख़्मी। फोतियुनि में खानचंद पुटु रामचंद, हाकिम पुटु शेरल ओड, संदसि पुटु रमेश ऐं भाटियो सोण ओड शामिल। फोतियुनि जा लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। पुलिस मज़दा ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे वरितो। कोटड़ी जी भरिसां कार्गो लोडरो रक्षा वाह में किरण सबबि ॿुॾी वियल टिनि ॿारनि जी ॻोल्हा जारी। ॿुॾी वियलनि मां रुॻो ॾहनि वरियनि जी ॿारड़ी लाहू थी। लाश हथ 12 सालनि जो मीर मोहम्मद, 11 सालनि जो मुंतज़िर ऐं 13 सालनि जे जुनेद गोपांग जी ॻोल्हा जारी। गुज़िरियल ॾींहुं मीरवा किनाल लिंक रोड तां कार्गो लोडर कंट्रोल मां निकिरी वाह में किरी पियो। कराचीअ में सीटीडीअ जे असाज़ इदारे सां गॾियल कार्रवाई, पाबंदी मड़ियल तंज़ीम सिपाह मोहम्मद जो टारगेट किलर गिरफ़्तार। सीटीडी मूजिब टारगेट किलर सैयद मोहम्मद अस्करी आबदीअ खे ॻुझे इतलाह ते गॾियल कार्रवाई दौरान गिरफ़्तार कयो वियो। टारगेट किलर्स केतिरनि ई कतलनि जे केसनि में बि घुर्बल हो। सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी तंज़ीमुनि जा मुज़ाहिरा। पटीदनि में क़ौमी अवामी तहरीक पारां सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। कंदकोट में जसकम सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ रैली कढी। अॻवाननि चयो त सिंध हिकु आहे ऐं हमेशा हिकु रहंदी। राधण भरिसां ॻोठ जाम ज़रदारी में, ज़रदारी बिरादरीअ जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थी पियो। ज़रदारी बिरादरीअ जे हिकु धुर पारां राधण नओं ॻोठ रोड ते मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। एहतजाज कंदड़नि इल्ज़ाम हयो त मुख़ालिफ़ धुर वारनि असांजे घरनि ते हमिलो करे तशदुद कयो आहे। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ कयो वञे। जमाल शाह में रोड हादसे में मुलविस मज़दा खे पुलिस पारां छॾण ख़िलाफ़ मुतासिर शहरनि जो एहतजाज। पुलिस ते मज़दा खां पैसा वठी छॾण जो इल्ज़ाम। मुज़ाहिरीन मुझे मज़दा जे टकर में बनीगर फोत थिया हुया। पुलिस हिरासत में वरितल मज़दा रिश्वत वठी छॾी आहे। जवाबदार ड्राइवर ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। ऐं सिंध समेत समूरी दुनिया में रहंदड़ हिंदू बिरादरीअ जो राखीअ जो मज़हबी ॾिण मल्हाए रही आहे। भाउ ऐं भेण जे रिश्ते खे वधीक मज़बूत बणाइण लाइ भेनर भाइरनि खे राखियूं ॿधी रहियूं आहिनि, जॾहिं त भाइर बि भेनरुनि जे तहफ़ वारो वचन वरजाए रहिया आहिनि। राखीअ जो ॾिणु हिंदू धर्म जे आम ॾिणनि मां हिकु आहे।
1: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
4: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
5: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
6: खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी, सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिणु कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-32-41-230।
10: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राबितो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
11: ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
12: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
10: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
12: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल,
10: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
12: बस पो हाने कनो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
12: 03125252786
10: जी हाँ 2315525786
12: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
10: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

न्यूज़ एंकर कमर्शियल ब्रेक हम लोग तो वो भी है तमाम सभी भजन मिठन प्यारन भारन भजन के प्रोग्राम म्यूजिक बस्ती भी भलीकात प्रोग्राम म्यूजिक बस्ती जीएमओ एफएम एचए जे लाइव स्टूडियो में ऑन एयर के पे वने जे भी मां तमा जो पांचो आर जे गुलाब खान बेण तमा सा गदाया न सिर्फ जीएमओ एफएम एचए जे असन प्यारा भाईर बुझी रहे हैं असा के पर असा के जीएफएम नेटवर्क जे समूर स्टेशनन वारा जेके असन जा दिलबर दिलबर लिसनर्स आइन प्यारा प्यारा लिसनर्स आइन मीठा मीठा लिसनर्स आइन वे समूरा इन वक्त असा जे इन प्रोग्राम के बुधी रहा है। मीरपुर खास वारा अलाई के हलिया वे खबर ना अज मीरपुर खास वारा जो को मैसेज अजा थोड़ी मुख्य न रिसीव थो है मातली मां भी असा के मैसेजेस इंदा हुआ वो यार भी असो अलाई के हलिया वो है सकरन वारा भी घुमन बाकी मोरो सखर वारा पान मल्हाए रहा आहिनि निभाए रहिया आहिनि बाक़ी ॾिसूं था त असांजा जेके ॿिया लिसनर्स आहिनि उहे किथे आहिनि ऐं उन सां गॾो गॾु तव्हांखे मां इहो मैसेज करण जो तरीक़ेकार ॿुधायां ख़ासि तौर ते उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके असांखे हिन वक़्तु ताज़ो ई ॿुधी रहिया आहिनि या उहे असांजा भाइर भेनरूं जेके हिन वक़्तु असांखे दौरान सफ़र ॿुधी रहिया आहिनि त उहे ज़रूरु मूंखे मैसेज करे ॿुधाइनि त केॾां खां उन्हनि जो सफ़र जारी वसारी आहे ऐं दौरान सफ़र हू पंहिंजे गाॾीअ में कार में बस में जिथे भी ॿुधी रहिया आहिनि त उहे छा ॿुधणु पसंदि कनि था यकीन कयो तव्हांजो मैसेज मूंखे रिसीव थींदो ऐं तव्हांखे मां उहो कलाम ज़रूरु ॿुधाईंदुसि जेको तव्हां दौरान सफ़र ॿुधाईंदा भली पोइ तव्हां पंहिंजे गाॾीअ जो आवाज़ फुल करे छॾिजो ऐं न सिर्फ़ तव्हां बल्कि सभिनी खे उहो वी आई पी सॉन्ग ॿुधाइजो सॉन्ग जी जेका तव्हां फरमाइश कयो उहो सिर्फ़ पाकिस्तानी हुजे इंडियन सॉन्ग को बि न हुजे छो जो इंडियन सॉन्ग नॉट अलाउड आहे ऐं पाकिस्तानी कहिड़े सॉन्ग जी तव्हां फरमाइश करे सघो था जेको तव्हांखे असां ॿुधाईंदासीं त हाणे तव्हां कहिड़े तरीक़े सां मूंखां इहा फरमाइश करे सघंदव पंहिंजी मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में वञी MRO लिखो स्पेस कयो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888 ते।

प्रोग्राम में शामिल कंदासीं असांजे प्यारे भाउ जी फरमाइश ते जलाल चुगी जुगड़ो, ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग आहे, उन जे तरफ़ हलंदासीं। ऐं असांजो मूंखे अदा जन मैसेज कयो हुयो की त असांखे जलाल जोगी ॿुधायो, त जलाल जोगी उन्हनि जे लाइ आहे, न सिर्फ़ उन्हनि जे लाइ बल्कि जेके बि असांजा लिसनर्स आहिनि सभिनि जे नाओ आहे।

जलाल जोगी जी खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजी सुंदर समातूं। अच्छा ही जलाल जोगी जी जेका फरमाइश मूंखे कई हुई न अदा उमेद अली ज़रदारी जे ॻोठ खां गुलाम सरवर बागाई कई हुई त मुंहिंजा मिठा साईं तव्हांजे नां ही स्पेशल सॉन्ग मां करे छॾियो आहे। वॾी महिरबानी आहे तव्हांजी। त हिन वक़्तु प्रोग्राम में कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि उहे शामिल कंदा था हलूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शो वेरी नाइस है। अच्छा ठीकु आहे, महिरबानी मुंहिंजा भाउ, तव्हांखे मुंहिंजो शो पसंदि अचे पियो, हुन जे लाइ लख कुर्ब लख अहसान तव्हांजा। ऐं असां सां गॾु आहे केरु, ख़बर आहे, मोहम्मद तैयब थेबो ॻोठ जो नालो आहे, ऐं उतां खां अदा हबीबुल्ला थेबो असां सां गॾु आहे। अदा हबीबुल्ला कीअं आहियो? ठीकु आहियो, तबियत सही आहे तव्हांजी? तव्हांखे मां पंहिंजे प्रोग्राम में स्पेशली भली कार चवां थो। थैंक यू वेरी मच ॻोठ उमेद अली ज़रदारी खां। गुलाम सरवर बागा ई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे। अदा गुलाम सरवर, तव्हांजे पसंदि जो कलाम ॾिसो मां प्ले करे छॾियो आहे। थैंक यू वेरी मच, ख़ुशि थी विया हूंदा। ऐं उमेद आहे त तव्हांखे इहो सॉन्ग पसंदि आयो हूंदो। चवे थो अलाह कतो ख़ुशि हूंदा। महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, इन ई दुआऊं कंदा रहो। मूंखे दुनिया में अगरि सभ खां वधीक जंहिं शइ ज़रूरत आहे उहा आहे दुआउनि जी ज़रूरत, त तव्हां मूंखे अहिड़े ई तरीक़े सां दुआ कंदा रहो। महिरबानियूं आहिनि तव्हांजूं। ऐं डेडिकेट करे पियो सांवल खान ज़रदारी ऐं भूरो खान लाको खे। महिरबानी मुंहिंजा मिठा, मौला तव्हांखे आबादु रखे, ख़ुशि हुजो। पनो आकिल खां सैयद इमदाद अली शाह पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, चवे थो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अदा जन जो ही शायदि ॿियो मैसेज आहे, चए थो आपका प्रोग्राम नाइस है। मुमताज़ मौलाई का मुमताज़ मौलाई जो कलाम असांखे ॿुधायो, जेको डेडिकेट करे थो ताहिर लोनाई रियाज जिस कहाणीअ खे। अच्छा अदा अब्दुल हफ़ीज़ मोरू खां असांखे मैसेज कयो हुयो, ऐं अदा जन फरमाइश कई त मूंखे तव्हां न ॿुधायो फौजा सुमरे जे आवाज़ में कलाम। दादा पहिरियों दफ़ो तव्हां मैसेज कयो, इन जे करे दिलि चयो तव्हांखे कलाम ॿुधायो। ऐं हालांकि फौजा सुमरो जो आवाज़ ॾाढो प्यारो आहे, न सिर्फ़ तव्हांजी पसंदि आहे पर इलाही सिंध में माण्हू उनखे तमामु घणो पसंदि कंदा आहिनि, ऐं हिन कलाम खे बि अहिड़े तरीक़े सां पसंदि कंदा ऐं इंजॉय कंदा।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमालु करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
3: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी।

0: वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
6: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
0: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 03132525786।
3: जी हा 2315-2576।
0: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अक्सर वालदेन सवाल की दा है तो जडे असा जे बारन के पोलियो वैक्सीन लगी चुकी है तो हाने बाद में उनन के केड़ी जरूरत पड़े थी। मुझो नालो हाफिज मोहम्मद इस्लाम नूनारी है। इन जो जवाब बिल्कुल आसान है। ये असा जे बार हन तो असा जी मामूली गफलत जे करे जिंदगी भर माजूर रहजी वजन था। अगस्त में 10 साल तई जे बार आन पोलियो बूस्टर डोज जो है वो लाजमी लग रहा है। पोलियो जहा कुछ अगर जरात रह भी वह अल्लाह के हुक्म से खत्म थी वा बच्चों हमेशा के लिए महफूज रहो बन भी माजूरी सबब न बनबो।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
6: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

कमल शर्मा जी खां बि अॻिते ॿियो तव्हां सभिनी खे प्रोग्राम जे आख़िरी लम्हनि में भलीकार त कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि उन्हनि खे बि प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं ऐं प्रोग्राम जो वक़्तु बि पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुचण वारो आहे। त खानवाण खां वाहिद बख़्श ख़ासि केली पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो चए थो बेस्ट प्रोग्राम आहे। मुमताज़ लाशर जे कलाम जी हिता जिनि फरमाइश कई आहे। हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं, नेक्स्ट प्रोग्राम में तव्हांखे मुमताज़ लाशर जो कलाम ज़रूरु ॿुधाईंदो। गोठ मोहम्मद तैयब थेबो खां हबीबुल्ला थेबो अदाजन जो ही ॿियो मैसेज। महिरबानी अदा हबीबुल्ला, लख कुर्ब लख एहसान तव्हांजा, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया। रशीदवंद शर रामती कचे खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो ऐं चवे थो प्रोग्राम लाजवाब आहे ऐं सभिनी लिसनर्स खे सलाम चवे पियो। अहमद मुगल जो कलाम जी फरमाइश कई अथसि। अबा रशीद, हाणे ईअं आहे शर साहब, रशीद शर साहब वेठो तू अहिड़े इलाइक़े में जो ॻाल्हि न पुछ। हाणे ॻाल्हि ई आहे त तोखे नेक्स्ट जेको प्रोग्राम ईंदो न जुमे वारो, उन में तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो मां कलाम इहो ज़रूरु ॿुधाईंदुसि, छो जो हींअर प्रोग्राम जो वक़्तु पहुची वियो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते। अहमद मुगल ॾाढो भलो रागी आहे, न सिर्फ़ अव्हां खे बल्कि मूंखे बि ॾाढो पसंदि हूंदो आहे। महिरबानी आहे अदा तव्हांजी, हक़ मौजूद अदा कैसे हो अदा, मां बिल्कुलु ठीक ठाक आहियां। अब्दुल कदीर ख़ासि केली ॻोठ हाजी ग़ुलाम अहमद ख़ासि केली खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो नज़दीक कुनरी ऐं तालको, अच्छा नज़दीक कंडड़ी तालको मोरो। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे कलाम जी अदाजन फ़रमाइश कई आहे त मुंहिंजा मिठा साईं हाज़िर, तव्हांखे बि ॿुधाईंदासीं पर मथे प्रोग्राम में, हिन प्रोग्राम में तव्हांखे इंतज़ार करणो पवंदो। त प्रोग्राम जो वक़्तु पुछी पंहिंजी पुॼाणीअ ते वञण खां पहिरीं हमेशह वांगुरु तव्हांखे चवंदासीं पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखो, दोस्तनि जो, मिटनि माइटनि जो, पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखिजो। जुमे जो भलारो ॾियारो आहे उन ॾींहुं, ऐं असांखे पंहिंजी दुआउनि में ज़रूरु यादि कजो, निमाज़ जी पाबंदी कजो ऐं पंहिंजनि प्यारनि खे हरगिज़ न विसारजो। पंहिंजनि नंढनि मासूम ॿारनि खे दीनी दुनिया जी तालीम ज़रूरु ॾियो। जुमे जो ॾींहुं दुरूद पाक असर सां पढ़जो ऐं असांखे दुआ में यादि कजो। त ॿिए प्रोग्राम ते पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलह वाही अलह निगहबान, वीदे वीदे ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग प्ले कयो थो वञा, उन खे बि इंजॉय कजो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: रिपोर्ट अचान दियो अपोजिशन जी कमेटी ठाए जांच कयो तारीख ने कमेटी ता मामले के महदूद न कयो। सेनेट में गलाइंदे सेहत वारे वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल चयो आए त मुल्क में रोजानी 1300 बार मरी रहा है जिन जो हयातियों भी बचाए सकजन थी। निजाम सिड़ी ऐं गरी वियो आहे। वज़ारतुनि लाइ क़ब्रनि खे ख़राब न कंदासीं। सालियानो 4 लख ॿार मरी रहिया आहिनि, असांखे हल कढणु ॾियो।
2: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां सऊदीअ जे माहौलियात बाबति वज़ीर इंजीनियर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल मोहसिन जी मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि जे सहकार ते ॻाल्हियूं। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त पाक सऊदी ऐं तुर्की में थियल मके मुआदे बाद टे मुल्क वधीक वेझो आया आहिनि। मुआदे सां खिते में बि अमुन एताद जो पैगाम वियो आहे। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब स्टेट जग भाईवार आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि खे हाणे इक़्तिसादी ऐं ज़रई शोबे में सहकार वधाइणु घुर्जे। वज़ीर आज़म ज़रई माहिरनि जो वफ़द में सऊदी मोकिलण जो ऐलान कयो।
1: चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान जे दौरे ते आयल हार्ट बिजनेस स्कूल जे शागिर्दनि जी मुलाक़ात। पाकिस्तान जे सिक्योरिटी मामलनि खिते ऐं दुनिया में अमुन इस्तहकाम ऐं खु़शहालीअ खे हथी वठण लाइ कयल कोशिशुनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठ। ISPR मूजिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नौजवाननि जे तालीम, हुनर, कारोबारी सलाहियतुनि ऐं हक़ीक़तनि ते ॿधल सोच जी अहमियत ते ज़ोर ॾिनो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो त तेज़ीअ सां तब्दील थींदड़ ऐं गैर यकीनी सूरत हाल में नौजवाननि खे सोशल मीडिया ऐं प्रोपेगंडा जे असरनि खे समझंदे मुसबित ऐं बामक़सद किरदार अदा करणु घुर्जे। मुलाक़ात कंदड़ शागिर्दनि में मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां तालुक रखंदड़ शागिर्द शामिल रहिया।
2: आज़ाद कश्मीर जे नए वज़ीर आज़म जी चूंड अॼु थींदी। नून लीग जे नामज़द वज़ीर आज़म बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म तौर नामज़दगी फार्म जमा कराए छॾियो। नून लीग आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म जे नाले ते इख़्तिलाफ़ बरक़रार। कुझु मेंबर्स खे बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गिलानीअ ते ख़दशा आहिनि।
1: कराचीअ जे वापारी मीर रज़ा केस जी अदालती कमीशन जांच शुरू करे छॾी। मीर रज़ा जा घर भाती ऐं वकील जिब्रान नासिर कमीशन आॾो पेश। मीर मुर्तज़ा जे वालिद केस जी जांच ते बेतमादी ज़ाहिर करे छॾी। केस जी जांच कंदड़ कमीशन जे सरबराह जस्टिस उमर सयाल चयो आहे त जेको कुझु थींदो सभिनी जे साम्हूं ईंदो। इन्क्वायरी ऐं इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क़ु आहे। इन्वेस्टिगेशन न कमीशन करे सघे थी न वॾो वज़ीर। अवां जी दरख़्वास्त कमीशन सां तालुक न आहे। अदालत कमीशन खे रवायती अंदाज़ में न हलाईंदासीं। कमीशन अवां जे समूरनि सुवालनि जा जवाब ॻोल्हण जी कोशिश कई वेंदी।
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
6: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
7: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
8: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
9: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
10: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
9: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
10: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
11: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
12: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
11: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
12: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
11: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, थे में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
12: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
13: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
14: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
11: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
1: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
13: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल,
13: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
15: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
13: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
15: 03125252786
13: जी हाँ 2315525786
15: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
13: सिंध जो आवाज़।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अघ मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।

0: वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347 बट्टी 41 200
1: खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर बदीन में माहिर ऐं मशहूर डॉक्टर कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर शहबाज खान MBBS FCPS न्यूरोलॉजी फॉलोशिप स्ट्रोक फालेज लकवा मिर्गी जा दौरा पवण मथे जो सूर माइग्रेन चक्कर अचण या फेरी थियण पुठे ऐं कंध जे सूर जो ऐं नसन जो इलाज कंदो आहे। डॉक्टर शहबाज खान साहब हर जुमे जे ॾींहुं मंझंदि 2:30 खां 4:30 वगे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो आहे। एड्रेस डॉक्टर अली नवाज टालपुर जी अस्पताल कोर्ट रोड बाईपास बदीन। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0311-7099-890।
0: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2101-43-842। जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GA FM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: सत रोज सजन ते पान करो तब धंधा।
1: इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जने पढ़ू था दरूद सजन ते पान दरूद बुधन था, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाज फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाज फरमा।

लगाएं, इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबा से बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबा से बुलंद।

आशिक बैठे हैं तो अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समाज फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद, हैदर वर का सकीन कोई देखी आए जग सारा सफर दबेड़ा।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: ॿिन ॿारनि खे मरण खां बचाइण लाइ गॾु वेहणो पवंदो। साने जी रिपोर्ट लिकाइण या कंहिंखे बचाइण जी नियत न आहे। रिपोर्ट अचण ॾियो। मुल्क में रोज़ानी 1300 ॿार मरी रहिया आहिनि, जन जूं हयातियूं बचाए सघजनि थियूं। निज़ाम सड़ी ऐं गरी वियो आहे। वज़ारतुनि लाइ कबरुनि खे ख़राब न कंदासीं। सालियानो 4 लख ॿार मरी रहिया आहिनि, असांखे हल कढणो पवंदो।
1: इस्लामाबाद जे पिम्स में पेश आयल साने जी जांच जारी। वज़ीर आज़म पारां जोड़ियल कमेटी पिम्स जे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत ॿियनि जा बयान कलम बंद करे वरिता। फोती ॿारनि जे वारसनि खां ॿिया बयान वरिता विया। जांच कमेटी वज़ीर आज़म खे अॼु शुरूआती रिपोर्ट पेश कंदी। कानून वारे वज़ीर आज़म नज़ीर तार चयो आहे त जांच कमेटी अॼु शाम ताईं शुरूआती जांच रिपोर्ट वज़ीर आज़म खे पेश कंदी। तफ़सीली रिपोर्ट 7 ॾींहनि में साम्हूं ईंदी। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई बि थींदी।

वज़ीर-ए-आज़म जी चूंड अॼु थींदी। नून लीग जी नामज़द वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर-ए-आज़म तौरु नामज़दगी फार्म जमा कराए छॾी। नून लीग आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म जे नाले ते इख़्तिलाफ़ बरक़रार। कुझु मेंबर्स खे बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गिलानी ते ख़दशा आहिनि।

कराची के व्यापारी मीर रजा केस की अदालती कमीशन जांच शुरू कर छी। मीर रजा जहा घर भाती है वकील जबरान नासिर कमीशन आरोप पेश। मीर रजा के वालिद केस की जांच से बेएतमादी जाहिर कर छी। केस की जांच कदर कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सियाल है जो कुछ सभी के सामूं इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में फर्क है। इन्वेस्टिगेशन न कमीशन कर सके तो न वही वो वजीर अवां की दरख्वास्त जो कमीशन से ताल्लुक ना है। अदालती कमीशन के रिवायती अंदाज में न हलाइंदी। कमीशन अवां के समूरन सवालों का जवाब घुरण की कोशिश कई वेंदी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अक्सर मान जो सवाल हों असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उन में इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ, हाई रिस्क हुंदा आन। उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तमा के वैक्सीन जे लाए उम्र जी हद कोने कैम जगह ते वैक्सीन कैम उम्र ते पोलियो लगी सके तो कैम उम्र ते वैक्सीन करे सके पर रेशियो वधी क 10 साल के घटा तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए सब जी के बूस्टर डोज लगराए।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
9: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
10: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डीं जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जडे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। त इंदो आसान जवाब यो आ, ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक वडी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाज़मी है, जरूरी आए। असाजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए, ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आयन उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
3: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
0: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GA FM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकर तवां के मैदे जी तकलीफ है, सीने जी जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, त हाणे परेशान थियण जी जरूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलन लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: रखे हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंकी आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिन जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असा बार पेर पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जका वह बेहतर थिए थी। हाँ जका कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो डींदी उनमें का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जका पांजे बार के करायो तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुजी मर्ज में जो महफूज रहन।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: रखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
2: करे जाहिर नहीं दो कर। लिखन में थे न कोताही।

0: ਤੁਝੇ ਰੱਖਿਆ ਮਠਾ ਹੈ ਜਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ
1: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਦੀ ਮਹਿਰਾਨ ਮਹਿਰਾਨ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ GFM 88 ਨੈਟਵਰਕ ਸਿੰਧ ਕੀ ਆਵਾਜ਼।
2: अक्सर वालदे ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरफा है, मैं एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बज़ाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियाँ सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सां तालुक नाहे। अदालती कमीशन खे रिवायती अंदाज में न हलाईंदासीं। कमीशन अव्हां जे समूरनि सवालनि जा जवाब ॻोल्हण जी कोशिश कई वेंदी।
1: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो नेपाली वज़ीर सां फोन ते राब्तो। बोर्ड में तबाह थियल ऐं माली नुक़सान ते अफ़सोस, हमदर्दीअ जो इज़हार। मुश्किल वक़्त में इंसानी बुनियादनि ते मदद जी आश। शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तानी अवाम ऐं हुकूमत मुश्किल वक़्त में नेपाली अवाम ऐं हुकूमत सां हमदर्दी जो इज़हार करे थी। नेपाली वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जा थोरा मञीदे चयो त कुदरती आफ़त वक़्त मदद पाकिस्तान जा थोराए था आहियूं।
0: वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां एफ़ सी जी ट्रेनिंग सेंटर शबकदर जो दौरो। एंटी राइडिंग जे ख़ुसूसी तरबियती मशक़नि जो जाइज़ो वरितो। मोहसिन नक़वी पारां अहलकारनि जी पेशेवरानी सलाहियतनि, जदीद तरबियत ऐं ऑपरेशनल तयारियुनि जी साराह। मोहसिन नक़वी चयो आहे त पुरअमन एहतजाज सभिनी जो हक़ आहे, कानून हथ में खणण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी।
1: रूस कंहिं बि नेटो मेंबर ते हमिलो न कंदो। सीआईए मेंबर जो मॉस्को जे दौरे जो मक़सदु बि ख़ासि पैगाम मोकिलणु न हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जॉन रेडक्लिफ छहनि महीननि या साल में पंहिंजे रूसी अमनस्व सां मुलाक़ात कंदो। संदसि मॉस्को वारे दौरे जो मक़सदु ख़ासि पैगाम पहुचाइण न हो। आबनाए अरूस बाबति रूस जो रवैयो मुसबित हो। ईरान वटि फ़ौजियुनि खे पघार ॾियण जेतिरा ई पैसा न आहिनि रहिया। आबनाए अरूस खे बि बारूदी सरंगनि खां साफ़ करे छॾियो आहे।
0: ईरान ऐं ओमान विच में आबना हरमुज़ में वक़्ती रस्तो खोलण ते इतफ़ाक थी वियो आहे। राहदारीअ जो हिकड़ो हिसो ईरानी ऐं ॿियो हिसो ओमानी पाणी मां हूंदो। ॿिए मुल्क गॾियल तौर ते जहाज़नि जी अचवञ जो इंतज़ाम ॾिसंदा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त आबना हरमुज़ जे लम जो वाज़े तौर ते तइन करे छॾियो आहे। अमेरिका ईरानी शर्त मञिया त आबना हरमुज़ ॿीहर मुकमल तौर ते खुली वेंदो। परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त ॻाल्हियुनि जी बहालीअ लाइ अमेरिका खे इतमाद बहाल कंदो।
1: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो तुर्किया जे परॾेही वज़ीर खाकान फिदान सां राब्तो। बितरफ़न लागापन समेत खिते जे सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। परॾेही खाते मूजिबि ॿिन्ही अॻवाननि चार मुल्की परॾेही वज़ीरनि जे इजलास बाबति बि तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई। खिते जे सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई।
0: वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां वफ़ाक़ी वज़ीर अली परवेज़ मलिक जी मुलाक़ात। सिंध जे गैस ऐं तवानाई वारनि मामलनि ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वॾे वज़ीर चयो आहे त गैस फील्ड सूबाई हुकूमत हवाले करण जो मुतालबो। सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध मुल्क में सभ खां वधीक गैस पैदा कंदड़ सूबो आहे। सिंध जे आइनी हक़नि जो एतराम कयो वञे। वफ़ाक़ी वज़ीर अली परवेज़ मलिक चयो आहे त सिंध हुकूमत जे गैस वसीलनि बाबति मौक़िफ़ ऐं तजवीज़नि खे अहमियत ॾियूं था। मसला जल्द हल कया वेंदा।
1: सब्र जे स्टार पारां 17 ग्रेड में प्रोमोशन न मिलण वारे मामले जो वॾे वज़ीर नोटिस वरितो। सब्र जे स्टार पारां तरक़ियूं न वठण जा तफ़सील तलब। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वॾे वज़ीर जे नोटिस बाद सब्र जे स्टार जे तरक़ी न वठण वारे आर्डर ते अमल रोके छॾियो। मुराद अली शाह चयो आहे त केतिरियूं पोस्टियूं ख़ाली आहिनि, केतिरनि सब्र जे स्टार प्रोमोशन वठण खां इनकार कयो। तफ़सीली रिपोर्ट पेश कई वञे। ट्रेड सब्र जे स्टार तरक़ी न वठण जी लिखत में दरख़्वास्त कई हुई।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GAFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबब न बणंदो।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻारायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मख़सूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: ख़ुशख़बरी, ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त
3: पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ ए मातली बदीन
7: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 0331252576
3: जी हा 2315525786
7: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन दरे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तेंदो आसान जवाब यो आ, ही बार भी असामट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखना लाजमी है, जरूरी आए। असान जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए, ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए, उन्हन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
4: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली। खुशखबरी
7: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
9: ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
10: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
11: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
7: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन।
11: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
11: 0331252576।
7: जी हा 2315525786
11: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

जी जी वेलकम बैक मेरा पिया घर आया हो राम जी। क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना हमने आपके समाजों की नजर किया और यकीनी तौर पर आप में थोड़ी बहुत एनर्जी तो बूस्ट हुई होगी, आई एम डैम श्योर, क्योंकि जनाब जब इतना जबरदस्त म्यूजिक चलता है तो ऑफ कोर्स एनर्जी का डबल होना तो बनता है। 521 टाइम इज राइट नाउ, सखर की ये जबरदस्त सी हल्की फुल्की सी गर्मा गर्मी फिलहाल, और आपका अपना अशफाक नियाज़ी आ चुका है आपके साथ आपके अपने शो आई लव यू ऑल में। सखर टू कश्मीर, घोट की लाड़काना जनाब और हैदराबाद, मिठी मातेली दादू, पता नहीं कहाँ कहाँ हम सुने जा रहे हैं जनाब, जहां जहां तक सुने जा रहे हैं वहां वहां तक के तमाम दोस्तों को हम कहना चाहते हैं कि जनाब आप हमें कॉल कीजिए 03000113488 पर। लेते हैं जनाब शो की पहली पहली कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ आ चुके हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो जाता है जब मैं कॉल लेता हूँ तो जनाब मेरे साथ लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ ना कुछ तो जरूर पंगा हो जाता है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? चलें जनाब नहीं आ रही तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। हेलो हेलो जी जनाब, कभी कभी इस तरह प्रॉब्लम हो जाता है लेकिन बार बार होता है तो बुरा लगता है मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एनीवे अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, हमें आवाज शवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है जनाब, हम आपके साथ मौजूद हैं और इसी तरह आपके साथ रहने वाले हैं शाम के 7 बजे तक, और हम आपको सुनवा देंगे एक और गाना जनाब, क्योंकि हम आपके साथ बहुत सारे चिट चैट करना चाहते हैं, आपको एंजॉय करवाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जनाब आप हमारे साथ रहें तो बहुत मजे में रहें ना, और जब मजे में नहीं कोई वो बनता, मजे का कोई सीन नहीं बनता तो फिर हम सीन बनाना जानते हैं, तो चले जनाब हम सीन बनाते हैं आपके मजे के लिए। आपके सुनाते बहुत प्यारा सा गाना इस वक्त मेरे पास मौजूद है, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव स्लोली, क्योंकि इस वक्त मैं प्ले करने वाला हूं कहानी सुनो जुबानी सुनो, हमें प्यार हुआ था हमें प्यार हुआ था। इस गाने को सुनिएगा जनाब क्योंकि मैं प्ले कर जाऊंगा आपके लिए बहुत सारा जबरदस्त गाना, और अगर आज आपके किसी भी दोस्त की बर्थडे है, किसी फैमिली मेंबर की बर्थडे है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मुझे जनाब फेसबुक पे मैसेजेस कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपकी विशेष को आपके प्यारों तक पहुंचा दूंगा। डोंट फॉरगेट ऑल।

0: जी जनो वेलकम बैक वंस अगेन। आप लेते हैं शो की एक और कॉल। मुझे प्यार हुआ था। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है हो? जमाल साहब, क्या हाल चाल है? तव्हां ठीक ठाक आहियो? मज़े में आहियो? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। मूंखे इहो ॿुधायो त अॼु जो ॾींहुं तव्हांजो कीअं गुज़रियो ऐं जेको आहे गर्मा गर्मी कीअं आहे? शिकारपुर में वधी आहे, घटि थी आहे, छा थियो आहे?
1: गर्मा गर्मी घणी आहे, कुझु मसाला नॉर्मल आहे।
0: अच्छा, नॉर्मल मौसम हर जॻह ते मौजूदु आहे। मामा जमालदीन भयो साहब, इहो ॿुधायो त अॼु गानो कहिड़ो ॿुधणु चाहियो था? मुमताज़ लाशारी साहब, बिल्कुल तव्हांजे लाइ प्ले कयूं था। ऐं कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। पंहिंजो ख़ासि ख़्याल रखिजो। ओके, हमारे साथ जनाब जमालदीन भयो साहब फ्रॉम शिकारपुर। और आप भी अगर कहीं पर भी हमारी आवाज समाप्त कर रहे हैं तो जनाब हम आपके साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब, खैर सा सबनी सागर? जुहेब कटबर लारकाना से। कैसे हैं जुहेब भाई? ठीक ठाक, मजे में हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आप सुनाए कैसे हैं?
0: फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। क्या करते हैं आप लारकाना में?
2: सर बस लारकाना में रोजगार करता हूँ।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, कहीं हले तो ताजो रोजगार?
2: अल्हम्दुलिल्लाह सर,
0: फर्स्ट क्लास हले तो?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: जबरदस्त जबरदस्त। पढ़ाई वढ़ाई कंदा आहियो, सिर्फ कम कार कंदा आहियो?
2: पढ़ाई
0: भी करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जबरदस्त सर। असांखे दुआ में हमेशा याद रखंदा कयो।
2: आमीन।
0: अच्छा जुहेब भाई, इहो त ॿुधायो त मुमताज़ लाशारी थो हलाइण चाहियां अदे जमाल दीन भयो जी फरमाइश ते, त कहिड़े कंहिंखे तव्हां डेडिकेट कंदव?
2: मां दोस्त खे करूंगा, आसिफ चाचर को।
0: जी जी।
2: और ज़ैनुल आबिदीन मुसीब रहमान को।
0: बस
2: बस
0: चलें, ठीक है। थैंक यू जुहेब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। लड़काना वाले भी आ चुके हैं हमारे साथ जनाब, शिकारपुर वाले भी आ चुके हैं हमारे साथ और बहुत से सिटीज अभी रहते हैं जनाब। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। अब क्या होगा?
0: अब ब्रेक का टाइम।
2: तो फिर क्या होगा?
0: तो फिर मुझे ब्रेक पे जाना होगा।
2: वैसे 29 हो गया।
0: नहीं, मुझे वैसे ये बताओ तुम ब्रेक के टाइम क्यों आते हो, ये बताओ
2: यार। दरअसल मैं कह रहा हूँ मैं आपके ब्रेक फेल करूँ लेकिन आपके टाइट हो जाते हैं।
0: मेरे ब्रेक फेल करने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ।
2: उसके अपने ही ब्रेक फेल हो जाते हैं।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सुनाओ इरफान भाई, कैसे मिजाज है आपकी, आपकी खबड़ी संगत और लाल संगत कैसे जा रही है?
2: मुझे कहते हैं इरफान अली, मेरी कास्ट से वो और मेरी संगत गुलाबी और मेरी यूसी खबरी बिट। आगे बताऊं?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बताएं बताएं।
2: मेरा तहसील साले पर, जिला सक्कर, सूबा सिंध, मुल्क पाकिस्तान, खंड एशिया, दुनिया पानी, आगे जाना है।
0: क्या बात है, क्या बात है। और आगे कहाँ जाना है ये बताओ।
2: पता है आपको?
0: नहीं।
2: अगर किसी भी जान में लोग सुन रहे होंगे ना,
0: हाँ,
2: उसने मेरी पूरी डेटा निकाल दी। अब उसको मेरी एड्रेस याद हो गई क्योंकि मैंने दुनिया फानी का भी जिक्र कर दिया।
0: दुनिया फानी का भी जिक्र कर दिया। वाकई ये बात तो है यार कि दुनिया फानी का जिक्र आपने कर दिया। अच्छा ये बताओ कि अब जो है इंतजार करोगे ब्रेक के बाद?
2: यार करना पड़ेगा,
0: करना पड़ेगा।
2: आज के बाद ना मैं एक चैनल लॉन्च करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ इंतजार न्यूज।
0: इंतजार न्यूज,
2: कभी भी न्यूज नहीं चलेगी, सिर्फ
0: इश्तेहार चलेंगे। चलो थोड़ा सा वेट करो, टाइम चेक का टाइम हो जाता है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। ओके ओके ओके।
3: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
5: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
6: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
7: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानू सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842।
10: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
11: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
10: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
11: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
10: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।

0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: ऐसी लग रही है।
0: हाँ ऐसी ही है, लग नहीं रही है ऐसी एक्चुअल में।
1: हाँ बिल्कुल, तो माहौल देखकर ना बंदा कदम उठाए।
0: एग्जैक्टली, बहुत समझदार हो तुम।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा ना हो कि हम कदम भी उठाएं और फिर एक कदम आगे उठाएं दो कदम पीछे चल जाए।
0: सही बात है, सही बात है, वाकई वाकई वाकई। चलो जनाब, डेडिकेशन
1: सिस्टर मिसेस अली और फौजिया फरजाना, सिस्टर दुआ, और उसके बाद रायत सुमरो, मुमताज सुमरो, हाफिज गुलाम अहमद सांबल, हुसैन बख्शो, नजीर मंगरो, बचन चमानी, जो भी दोस्त सुन रहे हैं सबको इरफान अली सेबो की तरफ से बहुत सारा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम इरफान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
1: थैंक यू,
0: थैंक यू। हमारे साथ जनाब इरफान अली थे वो खबड़ी भिट से, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 हमारा नंबर है, और जनाब हमारे साथ शो में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आ सकते हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, मुझे सुना के रसा सबनी सा गड जवार बचल मोहम्मद शंबाणी साहब, केड़ा हाल चाल आई तव्हांजा, नारो कीअं आहे?
2: नारो
0: सफ़ा मां ॿुधो आहे त नारियुनि में हाणे मगरमच्छ बि निकिता आहिनि। मां ॿुधो आहे, मां फोटो ॾिठा आहिनि अलाए ए आई ते ठहियल आहिनि, अलाए छा माना नारे जी जेका वाह वाह आहिनि उन्हनि में वाघू था घुमनि। हा त पोइ थोरो ध्यानु कंदा कयो यार ॿारनि जो पंहिंजो। हा ज़बार साहब, इहो ॿुधायो त तव्हां इन फ्यूचर तव्हां छा कंदा हो, कहिड़ी तव्हां सोच रखी आहे त मां हाणे छा कहिड़ो कमु कंदुमि, कहिड़ी जॉब कंदुमि? अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह भली ॻाल्हि आहे, अलाए तव्हांजी रोज़ी रोटी में बरकत विझे। इहो ॿुधायो मामा जमाल जी फरमाइश, मां मुमताज़ लाशारी थो प्ले कयां, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो? जी जी चलो ठीक है, अले वरायो लाशारी साहब के भी असां सलाम ॾिजो। थैंक यू ज़वार बसर शाह साहब। जी जनाब, हम प्ले कर चुके मामा जमाल भाइयों की फरमाइश पर ये गाना सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहां से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: तव्हांजो ख़्वाब आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि। 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल।
6: के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
7: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी। पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपका अपना स्वागत है आ चुका है आपके साथ, आपके अपने शो आई लव यू ऑल में। वेलकम बैक कहते हैं अपने तमाम दोस्तों को, और आप हमें कॉल कर सकते हैं जनाब, हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके मैसेजेस शामिल शो करते चले। अब्दुल रजाक साहब से बनता ऐसा के सॉन्ग बुधायो फौजी सुन लो जी, वाह तुझी दोस्ती मेहरबानी। ओके जनाब अब्दुल रजाक साहब, तुम्हें तमाम थैंक्स प्रोग्राम में शिरकत किया है। कहते हैं कि डेडिकेट कंदा से ऐसा मोहम्मद अली कुम्भार के यो फौजिया सुन लो सॉन्ग। ओके जनाब अब्दुल रजाक साहब, तमाम गुड थैंक्स। आई नजीर खोसवाहिन सोबतपुर बलूचिस्तान से कहते हैं, अगर गुब्बारा कभी आपके मुंह पर फट भी जाए तो गुस्सा ना करें, क्योंकि वो आप ही थे जिसने उसे बढ़ाकर उसके औकात से बड़ा किया था। कुछ इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो जनाब बहुत अच्छी बात की आपने। सोबतपुर बलूचिस्तान से नजीर खोसो साहब। अब्दुल रजाक कहते हैं, मोहम्मद खान कुम्भार बेवफा जमाल कुम्भार इजाज कुम्भार हालीपोटा स्टाफ लग झलोरी मेरे खास का, मोहम्मद खान कुम्भार बेवफा जमाल कुम्भार इजाज कुम्भार झलोरी स्टाफ का। थैंक यू सो मच तमाम संगत रहो। जेका भी दोस्तों वक्त असा के बुधन था, असा के मैसेज कर शामिल शो थो प्रोग्राम में, छो तो असा सभी दोस्तों से गड आयो शाम जे सते बजे ताई। वदन दशो जी नेक्स्ट कॉल आई चाहूं था पांजे कॉलर के जनाब। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। अशरक बा गिलू गिलू खालिक लाशारी गलायो।
0: खालिक लाशारी साहब केड़ा हाल चाल है तांजा?
1: अलहमदुल्ला बा तू बुधा तू जा कर हाल है?
0: फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। ये बुधायो झलोरी स्टॉप पर की लगा पियान सब, छो ताने मुके मैसेज आयो झलोरी का अब्दुल रजाक साहब जो, वो भी ठीक ठाक है माशाल्लाह। अच्छा तुम दोस्त आयो?
1: जी जी आ पारे में वेठो है।
0: सही सही सही। तुम कहता आयो दा खालिक भाव?
1: बनी बारो जो कर हर कोई कहना आयो।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह। की हले तो तुम बनी बारो?
1: सही वीआईपी हले तो खुशियों कमांडर सारी पानी पोखल है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह। यो बुधायो तेको आया जे गानो कड़ो बुधन चाहो था?
1: गानो
0: मिला ली जो है। मिला ली छो ना भाई
1: इलाही
0: गाना गानो
1: प्यारा
0: नाज प्यारा प्यारा तुझा मुखे बनी व्या। अच्छा
1: दोस्त बुधन गया?
0: सही सही सही। बुधायो बुधायो
1: अजीत जलवाल है, अजीत सोलंकी है, कुर्बान अली फर्स्ट के लिए गुलाम है, रजा के जो हले पुत्र झुलूरी में बुधे जो।
0: ओके
1: अरे
0: समन मिला बिल्कुल शमन मिला जो गानों पे हुआ तुझा ये नाज प्यारा प्यारा तुझा मुखे वड़ी आ। मेहरबानी सर मेहरबानी। थैंक यू सो मच खालिक भा। ऑल राइट गाइज, हमारे साथ खालिक भाई फ्रॉम झलूरी, और झलूरी के बाद अब देखते हैं कि हमारे साथ कौन आ चुके हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब केरा सा सबरी सा गडो गडो साले पटका केर आसा सबनी सा गडो इमाम डिनो भमरो। इमाम डिनो भमरो साहब केड़ा हाल चाल है तांजा? फर्स्ट क्लास
1: भाई।
0: साले पट वाला सब किए हैं मौजन में आए या न? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मस्त रहो सर, मस्त रहो हर वक्त रहो। आई ये बुधायो असारे शो ताके की लगे थो? अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। यो बुधायो तो साले पट में अजकल केड़ो मौसम आहे? माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। यो बुधायो शमन जो गानो बुधाया तो अदे जी फरमाइश थे खालिक भाजी कहते नारा था करना चाहो? सही सही। ओके जी जी जी जी। हाय थैंक यू सो मच। ओके इमामदीन भमरो साहब पांजो खास ख्याल रखियो। जी जनाब हमारे साथ इमामदीन भमरो साहब, आप भी हाथ पे हाथ रखे मत बैठे। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो जनाब किसी को भी डेडिकेट कर सकते हैं कोई भी गाना, और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 03000113488। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद के रसा सबनी सा गड। लाशारी भाई क्या हाल चाल है न? फर्स्ट क्लास मजे में। छा था क्यों आई छा करना चाहो था जिंदगी में?
1: जमीन पाजी कहीं ना हो।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तांजे रोजी रिज़्क़ में बरकत विझे। यो बुधायो असा जो प्रोग्राम तांके के लगंदो आप?
1: सही बेहतरीन लगंदो आप। हेलो।
0: हां माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। यो बुधायो ता मके हाने कॉल किया या पेरी भी ताजी कॉल लगंदी रहंदी आप?
1: अग में ॿ टे चकर लॻी आहे तव्हांजे प्रोग्राम में न बाबर साहब।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ओके ओके ओके ओके ओके लाशारी भाई शमन थो प्ले कयां, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो?
1: साईं रमार बचर
0: जी
1: उन जे नाले कंदासीं, उनखे सलाम बि ॾींदासीं।
0: जी जी वालेकुम अस्सलाम लाशारी भाई, पंहिंजो ख़ासि ख़्याल रखिजो। थैंक यू सो मच। जी जनाब हमारे साथ लाशारी भाई, इनको प्ले करके सुनवाते हैं जनाब खालिक भाई की फरमाइश पे या नाज प्यारा प्यारा। इस गाने को सुनिए, हमारे साथ हैं इस वक्त इनाम अली लाशारी फ्रॉम बचल शामयानी। तो इनाम भाई तांके असाजो सलाम, तवांखे यो गानो डेडिकेट था कयूं। इनाम जमाली साहब तवां यो गानो बुधो खोड़ सारनि जो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध असेंबली नवन सूबन की क्याम तोड़े नवन यूनिट्स के हवाले से थींदड़ गालिन ते बहस लाए रिथ मंजूर करे वरती। सिंध असेंबली जो इजलास स्पीकर अवेस कादर शाह की सदारत हेठ थियो। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ऐवान में नवन सूबन बाबत थींदड़ बहस के हवाले से रिथ ऐवान में पेश कई जका मंजूर कई हुई। स्पीकर अवेस कादर शाह चयो त रिथ ते सूमर वाले डी ब कलाक बहस कयो वेंदो। रिथ में चयो वियो त पाकिस्तान में नवन सूबन ए यूनिट्स के हवाले से बहस थी रो है जैमें सिंध की सरहदन से भी छेड़छाड़ वा नुक्ता शामिल आन। मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर इन मामले ते बहस कई वे। कौमी असेंबली ए सेनेट पिम साने बाबत ठहराव यकराव मंजूर करे वरतो। साने की शफाफ जांच कर जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। साने की जांच लाए पार्लियामानी कमेटी जोड़ने वाली रिथ भी मंजूर। अपोजिशन मेंबर्स पारा साने की जिम्मेवार खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जो मुतालबो कयो वियो। सेहत वाले फाकी वजीर मुस्तफा कमाल चयो तो बेन बारन के मरण का बचाने लाए गड वेहणो पौंदो। साने की रिपोर्ट लिकायण या कंके बचाने की नीयत ना है। रिपोर्ट अचण दियो मुल्क में रोजानो 1300 बार मरी रहा है जिन जो हयातियों बचाए सकजन थियो। निजाम सड़ी ए गरी वो है। वजारत लाए कब्रन के खराब न कंदासी। सालानो 4 लख बार मरी रहा है। असा के हल कढ़ो पवो।

वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो नेपाली वज़ीर आज़म सां फोन ते राब्तो, बोड सबब थियल जानी ऐं माली नुक़सान ते अफ़सोस ऐं हमदर्दीअ जो इज़हार। मुश्किल वक़्त में इंसानी बुनियादनि ते मदद जी बयाच। शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तानी अवाम ऐं हुकूमत मुश्किल वक़्त में नेपाली अवाम ऐं हुकूमत सां हमदर्दीअ जो इज़हार करे थी। नेपाली वज़ीर आज़म जा थोरा मञीदे चयो त कुदरती आफ़त वक़्त मदद ते पाकिस्तान जा थोराइता आहियूं। वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी पारां एफ सी जे ट्रेनिंग सेंटर शब कदर जो दौरो, एंटी राइट विंग जी ख़ासूसी तरबियत मशकनि जो जाइज़ो वरितो। मोहसिन नकवी पारां अहलकारनि जी पेशेवराणनि सलाहियतुनि, जदीद तरबियत ऐं ऑपरेशनल तयारियुनि जी बि साराह। मोहसिन नकवी चयो त पुर अमुन एहतजाज सभिनी जो हक़ आहे, कानून हथ में खणण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन सवाल की दा है तो जडे असा जे बारन के पोलियो वैक्सीन लगी चुकी आहे तो हाने बाद में उनन के केडी जरूरत पड़े थी। मोजो नालो हाफिज मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असा जे के बार हन तो असा जी मामूली गफलत जे करे जिंदगी भर माजूर रहजी वजन था। अगस्त में तो दहन साल तई जे बार आन पोलियो बूस्टर डोज जो आ वो लाजमी लग रहा पोलियो जहा कुछ अगर जरात रह भी वह अल्लाह के हुक्म से उ खत्म थी वेंदा ए बचो हमेशा के लिए महफूज रहो एन के लिए भी माजूरी सबब न बनबो।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलन जी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
9: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
9: 0331252578 6
5: جی ہاں 2311525786
9: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
5: سندھ جو آواز

0: वो दोबारा से रिचार्ज भी हो जाएगा अगर आप जो है प्रीपेड मोबाइल बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनाब अच्छी बात है, जिद्दत आती जाए, जिद्दत किससे बुरी लगती है। हम तो चाहते हैं कि जनाब जितने भी इदारे हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी चीजें चल रही हैं माशरे में, तो उनमें जिद्दत आती जाए बिल्कुल जनाब, क्योंकि अगर हम नए जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो हम बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे, और जब बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे तो फिर हमें आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती रहेंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब, हम सब अप टू डेट रहें, और जनाब जमाने के साथ चलेंगे तो जनाब हम आगे बढ़ पाएंगे, और जमाने की जो सहूलतें हैं, आसानियां हैं, वो हमें प्रॉपर तरीके से मिलती रहेंगी। आपका अपना अशफाक नाज़िर आ चुका है आपके साथ अगेन, और हम चाहते हैं कि आप हमें कॉल करें 03-000-11-3488 पर। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे प्यारा भा के रसा सबनी संगत सोना सोना सोना भा चाल चाल ताजा फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास बिल्कुल मजे में आए हूँ। तमाम बुधायो की आए हो, जेको बाद वारा सब की आहिन वाह वाह वाह वाह वाह। मुख्य लगे तो तमाम बाहर आयो काते बसन जी आवाज पे अच्छे पा पा पा पा अच्छा होटलिंग था क्यों अकेले के लिए चाय था पियो अकेले के लिए चाय था पियो दोस्तों सागर नहीं है ना
1: बिल्कुल
0: ना तुम चाय पियो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पियो खोड़ सारी पियो मुझे भी एक कप पीजी वनो अलहमदुल्ला सोना भाई बिल्कुल ठीक ठाक आयो मजे में आयो तुम सोना भाई अजी असान बुधन वालों के कोई गानों बुधाओ पांजी आवाज में एग्जैक्टली असा भी ये चवण चाहूं था पांजे जका लिसनर्स आइन उनके त नंढी नंढी गालें ते न कहीं का रुसो न नाराज थियो न वरी झेड़ो कयो छो त जिंदगी इलाही मुख्तसर आहे न खबर ही नथी पए त कहिड़ी जिंदगी काथे खत्म थी वेंदी त पोइ असांखे रुसण में ऐं नाराज़ थियण में मतिलब इहो असांखे मज़ो नथो अचे त पोइ हर कंहिं सां नाराज़ न थियो हर कंहिं खे मुस्कुराए ॾिसो ऐं जेको आहे हर कंहिं सां सुठे तरीक़े सां ऐं सुठे नमूने हलो माना मुंहिंजे गॾु सना प्रोग्राम करे हाणे त कयोसीं हाणे जश्न आज़ादी में कयोसीं असां जश्न आज़ादी में इनशाला इनशाला पंहिंजे एडमिन्स खे चऊं था पंहिंजे इंतिज़ामिया खे चऊं था त असांजो कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करे फौरी तौर ते। सोना ख़ान मस्तूर भाई जी फरमाइश आई आहे, इनशाला ज़रूर
1: ईंदासीं।
0: जी जी कंहिंखे
1: पंहिंजो जमाल दिन
0: थैंक यू सोना भाई। हींअर ख़बर अथव मां तव्हांखां फरमाइश कोन पुछंदुमि छो त तव्हांजी फरमाइश त मां हलाईंदो रहंदो आहियां, पर असांखे फेसबुक ते हिकड़ी दोस्त फरमाइश कई आहे, लिसनर आहे असांजो प्यारो जेको आहे अब्दुल रज़ाक साहब, हुन चयो आहे त फौजी सुमरो हलायो न न फरमाइश भली कयो तव्हांजी फरमाइश असां हलाईंदा बि सी पर इहा बि दोस्त जी फरमाइश आहे त मां चयो हुनजी बि फरमाइश पूरी कंदो हलां छो त हमेशा उहो वीचारो फरमाइश कंदो आहे त मां हुनजी फरमाइश प्ले न कंदो आहे। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू अदा, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। थैंक यू। बिल्कुल हमारे साथ है जनाब सोना खान मस्तोई, और जैसे इनका नाम सोना है वैसे ये खुद भी बहुत सोना दिल रखते हैं और सोनी सोनी सी बातें करते हैं। और इन्होंने कहा कि जनाब लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा, अगर आप लड़ाइयां करेंगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश आए, अमन शांति के साथ रहें और अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा एंजॉय करते रहें, क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है। तो इसलिए हमेशा अपनों का ख्याल रखें, उन लोगों का ख्याल रखें जो कि आपको बहुत चाहते हैं, हमेशा किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब, बस सभी से कह रहे आहे आहे केर के वहीद वफाई, आई थिंक
2: वफा अब्दुल
0: वहीद। एग्जैक्टली
2: शाबिल बाका।
0: हाँ जी वहीद वफा साहब, के हाल चाल अथव?
2: शुक्रा शुक्रा अल्लाह जी मेहरबानी आ तां जी आवाज अंदाज छोकरा तां बुधाय भाई इश्फाक तां जी मिजाज कि आ तां जी टेट जो सत कि आ
0: सब मिजाज सब सत सब ठीक ठाक आहिन तवां ही बुधा केटे शाबेलो किए लग पियो आ तां जा कामकाज कि थालन
2: हेलो आ पर हिन वक्त कुछ बोडल जे लपेट में आ माने हाँ कुछ बोडल जी वर बुधा न था तो गुडो ते लथो पानी बाके हाँ हुआ तो सुठो माना इलाको थधो माहौल।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह साईं थधो रखे सुठो रखे पुर अमन रखे है डिजास्टर्स का अला साईं इन इलाके का बचाए हमेशा खुशहाली रखे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: वहीद भाई बुधायो तो अज असा के कोई गानो गाए बुधायो यार वडो दिल तो चाहे तो कोई लिस्टर मुके गानो बुधाए या कोई शेर
2: असल में गाल या तो गानो बिल्कुल असा बुधाईंदे पर गलो सही ना पर मेरे मां टोटको बुधाया तो मास्टर मंजूर जो यार।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
2: दिसो यार मुझे जो कुर्बानियों धरपति हमें पंधड़ा थो करे तब सवेर सवेर थी वेंदिया सदड़ा तो करे दिसो यार मुझे जो कुर्बानियों भरतिया में पंधड़ा तो करे।
0: अच्छा यो यार के सराहे तो या गिला तो करे तो ना ही तो करने भागो
2: सारा
0: है तो सही है माचो वो शिकायत तो करे तो अचे तो भागो एडो टाइम दर तो बीह रहे तो बीह तो रहे
2: हैरत कह
0: जी जी
2: मां शहर जो भी शहर के बिना सलाम कह पर हर एक फनकार जो इसाफ जन बुधा नी हैरत मास्टर मंजूर अंदाज गाय वरी मुख्तार रशीदी अचे तो उन्हें अंदाज गाय
0: जी जी
2: थोड़ा सारा फनकार जलाल चांदे अंदर इोड़ अंदर था कदम सलाम पर मजो।
0: बिल्कुल जाहरी गाल है हर एक जो एक डिफरेंट अंदाज हों जी अर्जी हूं अस डिफरेंट अंदाज आ तो ये सिंगर्स भी जो हूं उन डिफरेंट एहसास जज्बात आवाज स्टाइल सब कुछ अलग हों।
2: बिल्कुल साई मां चौदह अगस्त ढो खूब बुधो पर अस खुश नसीब काल कुल वो बिन कलाक में चार काल में असि काल लगी ना बाकी बुधो से जो अगलो जुम्मो गुजरियो तो अड़ो कुदरती डेली ना अचो नी।
0: हाँ जी
2: वो उन कोई शायद मां कम भी हो डी के थकावट भी ना गाल भूल वही
0: मैंने भूल
2: मेहरबानी काल लगी वही अस प्रोग्राम पुराना पांदड़ा
0: माना मां तक नाराज आ हाँ तुम मुख्य भूल कि थे
2: ना वो हिं हो तो कुछ बोडल के लपेट में डी के जो कम करे तो वह कुछ ख्याल में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा सही है सही है कोई गाल ना। अच्छा वफाई साहब वफा साहब मां एक गानों तो प्ले क्या वहां तुझी दोस्ती रुसवा कर छो फौजिया सुमरो जो असाज अब्दुल रजाक भाजी फरमाइश
2: सच पुछी तो मां पा फौजिया सुमरे जा बेहतरीन कलाम मां पा बुध
0: सही सही गुड
2: उन नगम बेहतरीन हों जो बुध स्पेशली नाले
0: थैंक यू
2: तेखा बाद मुझे भाणी जो रफीक जतोई मुझे भाव जहीर में जतोई मुझे भाटो आया तो मैं जतोई तेखा बाद में सोना खान मस्त ही बुधी माखा में कॉल कर जानवर मोहम्मद बचल शंबानी जेके दोस्त बुधन था मुझे भाणी के रफीक जत खोड़ सारा सलाम
0: अब्दुल
2: वही जतुए पारा सजे सतक सलाम स्पेशली दादर शेख खोड़ सारा सलाम
0: वालेकुम असलम वालेकुम थैंक यू वहीद बा थैंक यू। जी जनाब हमारे साथ वफा वहीद फ्रॉम केटी शाह बेलो और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 हमारा नंबर है। लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब कौन गल कर रहा है तो कितों गल कर रहा है मैंनु थोड़ी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है ड्रॉप होगी कॉल पता नहीं कौन थे और आई थिंक जनाब उनके लहजे से बात से पता चल रहा था कि कोई हमारे पंजाबी भाई हैं तो इसलिए मैंने भी उनसे पंजाबी में बात करना शुरू कर दी और उनकी कॉल अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम अजीज सलंगी साहब, कहिड़ा हाल चाल आहिनि तव्हांजा? सफ़ा सफ़ा सफ़ा मस्त मलंग लॻा पिया आहियूं। तव्हां इहो ॿुधायो, मीरपुर वारा सभु कीअं
3: आहिनि?
0: माशाला माशाला माशाला, इहे ई मौज मस्ती में रहो हमेशा। ऐं मीरपुर खां तव्हां आया आहियो त तव्हांखे भली कार चऊं था। मुंहिंजा प्यारा भाउ, मीरपुर वारा भाउ, फौजी सुमरो प्ले कयूं था, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? आचर मरी साहब के बिनी हथनि सां सलाम असांजा। रेगुलर जुमो कीअं ईंदो आहे? जुमे तो 7 ॾींहं बाद ईंदो आहे, 6 ॾींहं बाद। अच्छा, माना जुमो न, माना रोज़ कयूं? हाय सदके वञा मां पंहिंजे भाउ ते। थैंक यू सो मच, इनशाला ताला असां हिनखे रेगुलर कंदासीं, मुंहिंजा भाउ। हैलो, थैंक यू सो मच मीरपुर वारा भाउ, प्यारा प्यारा भाउ, तव्हां असांजे प्रोग्राम खे रोज़ ॿुधणु चाहियो था त इनशाला ताला ज़रूर ईंदासीं, तव्हांजे फरमाइश ते अमल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम
0: जी जनाब, केर सां सभिनी सां गॾु? मोहरम अली टावरी साहब। मोहरम अली टावरी साहब, कहिड़ा हाल चाल अथव? ठीक ठाक आहियो, मज़े में आहियो? मोहरम भाउ, छा कंदा आहियो मोहरम भाउ? माशाला माशाला, मोहरम भाउ फौजी सुमरो ॿुधाइण वारो आहियां, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो?
4: नालो त तमामु दोस्तनि
0: जी थैंक यू, थैंक यू अदा, पंहिंजो ख़ासि ख़्याल रखिजो मोहरम टामरी साहब। मां गानो प्ले करे चुको आहियां, ॿुधो ई खोड़ सारनि जा कयो जी जनाब। हम प्ले कर चुके हैं अब्दुल रजाक झलूरी से, उन्होंने हमें फरमाइश की थी, तो इस गाने को सुनिए और सुनते रहिए जीएफएम 88 नेटवर्क से। आपका अपना शो आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी।

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

बॉलर आ जाए तो हमारी जो है क्रिकेट टीम जो है कुछ स्टेबल हो जाए। क्योंकि ना पाकिस्तान जो माजी में फास्ट बॉलर्स के हवाले से खुद कफील रहा है और ऐसे नामवर तेज रफ्तार बॉलर्स पैदा किए हैं पाकिस्तान ने, जिनसे दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े जो है बैटर्स डरते थे। तमाम कुछ सालों से फास्ट बॉलिंग के हवाले से मशहूर पाकिस्तान क्रिकेट में पेसर्स का ऐसा कहर पड़ा है कि इस वक्त कौमी टीम में ऐसा कोई फास्ट बॉलर आई थिंक मौजूद नहीं है जो कि 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करके मुखालिफ बल्लेबाजों की विकेटें उड़ा दे, छक्के छुड़ा दे। तो जर दोस्तों, अब खबर अच्छी ये है कि पाकिस्तान को एक और शोएब अख्तर मिल चुका है। बिल्कुल जनाब, 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद कराने वाला नया फास्ट बॉलर हमें मिल चुका है और ये बासलाहियत नौजवान कयूम खान जंग का रिहायशी है जो 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करके सबको हैरान कर रहा है। बिल्कुल जनाब, ये फास्ट बॉलर हमें मिला है वजीर आजम टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए और अपनी सलाहियतों के जरिए। कयूम खान

0: खुदा तुझे भूल जाऊं मुझसे होगा।
1: क्या बात है, मोहम्मद अली पे पिक्चराइज हुआ ये गाना।
0: तेरा प्यार कम न होगा।
1: मेहदी हसन की बेहतरीन सी वॉइस, मोहम्मद अली साहब पे पिक्चराइज हुआ ये गाना। क्या कमाल गाना है, हम जरूर प्ले करेंगे जाते जाते।
0: थैंक यू सर, थैंक यू। मौला आपको सलामत रखे, बहुत सलाम आपको, रफीक भैया को, जवाब मोहम्मद बचाली, सोना खान मस्तोई, और जो भी जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सबको अली मोहम्मद बम्बरों की तरफ से बहुत सलाम और दुआएं आपके लिए। मौला आपको सलामत।
1: थैंक यू सो मच भमरो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहे।
0: थैंक यू सर
1: मोहम्मद अली साहब। थैंक यू जी जनाब, मोहम्मद अली भमरो साहब थे बहुत प्यारी सी आवाज के साथ, उन्होंने गाना फरमाइश किया है तो हम जरूर गाना प्ले करेंगे। और एंड में और लेते हैं शो की अब एक और कॉल, देखते हैं हमारे साथ लाइन शाइन पे कौन आने वाला।

0: वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या बात है, बड़े सुरीले से लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो ये कौन सा सुरीला सा हमारा कॉलर हमारे साथ मौजूद है जनाब? वाह वाह वाह वाह वाह, हुसैन बख्शियार साहब के हाल चाल है, ठीक ठाक आयो, मजे में हो, तमाम घणा एनर्जेटिक आयो, मुख्य तमाम घणो वणियो तांजो स्टाइल अचल। माशाल्लाह माशाल्लाह, यो बताओ तानी संगत की आज के जेको ता नालो बतो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह सही नवा भी संगत वाला टोटल मुजा भार खुश है ना आए प्रोफेसर में है ना
1: थैंक यू सो मच तक दिल लगाए असो प्रोग्राम बुधा आने दिल लगाए प्रोग्राम में तुम उर्स चांडियो तो प्ले क्या कैं नाल कर चाहो जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल चलो ठीक है आदा, थैंक यू सो मच
0: प्रोग्राम सर,
1: थैंक यू सो मच अदा तक असो प्रोग्राम वो है कुर्ब मेहरबानी हो हमेशा खुश रहो।
0: थैंक यू
1: सो मच। बिल्कुल हमारे साथ बहुत प्यारे से दोस्त इनको गाना सुनवाते हैं और थरपाकर से ये फरमाइश आई थी तो सुनिए और एंजॉय कीजिए।
2: यो कदे ख्याल ओ मकली में आचार जा खरो चवे फरमाला सोना याकूब खास डॉक्टर साहिब छोटी

0: जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपका अपना अशफाक नियाज़ी आ चुका है आपके साथ आपके अपने शो आई लव यू ऑल में। जनाब, टाइम बहुत तेज रफ्तारी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है, लेकिन हम चाहते हैं जनाब कि हम जो है आपके साथ हर टाइम, हर मिनट, हर पल, हर सेकंड को एंजॉय करें। सो गाइज, हम एंजॉय करने के लिए आपके साथ बिल्कुल तैयार हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब, आई थिंक कॉलर हमसे बात ही नहीं करना चाहते लेकिन कोई बात नहीं जनाब, हमें पता है कि आप हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन समटाइम लाइन में प्रॉब्लम हो जाता है, समटाइम कुछ एरर आ जाता है, तो कोई बात नहीं जनाब, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। खैर जनाब, आप ये सोचें कि इन लाइन्स में एरर चल जाता है, इन कम्युनिकेशन में एरर चल जाता है, लेकिन जिंदगी में एरर कभी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल जनाब, क्योंकि जिंदगी एक ही होती है और इसको हम अच्छे तरीके से गुजारें। वो हमारे सोना भाई ने भी एक बात की कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसको लड़ाई झगड़ों की नजर ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जनाब देखिए ना, अगर हम लड़ाई झगड़े में करके लोगों को हर्ट करेंगे और लोग हमारी वजह से अगर खुदा से शिकायत कर दें तो फिर क्या होगा। देखे ना, अगर हम किसी का दिल दुखाएं और किसी के साथ ज्यादती करें, नाजायजी करें, तो फिर वो अल्लाह ताला से शिकायत अगर करें तो फिर यकीन जाने हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला ज्यादतियां माफ नहीं करते, अल्लाह ताला जरूर जनाब उसका हिसाब लेते हैं और मजलूमों की दाद रसी करते हैं, तो फिर क्यों हम किसी का दिल दुखाएं। इतनी मुख्तसर सी जिंदगी में हमें चाहिए कि हम लोगों के काम आए, अगर काम ना भी आ सकें तो उनके सपोर्ट, उनको सपोर्ट करें, वर्बली करें, उनको उनके साथ के तौर अपने सपोर्ट करें। जरूरी नहीं कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट करें, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, तो अपना साथ उनको दें, अपना वक्त उनको दें और उनकी अपनी हमदर्दियां उनको दें, अपने लफ्जों के जो है से उनको छलनी ना करें बल्कि उनको तसल्ली दें। तो ये चीज हमें जरूर करनी चाहिए ताकि हमारी जो मुख्तसर सी जिंदगी है इसमें हमें बहुत सारा सवाब कमाने का मौका मिले। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल
0: है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे से भाई, कौन हमारे साथ?
1: आपको तो पता होगा लेकिन आप आवाज मेरी नहीं पहचान पाई, तो मैं संपर्क करवाता हूँ। सैयद इमदाद अली शाह बात कर रहा हूँ।
0: सैयद इमदाद अली शाह साहब, आपको प्रोग्राम में भली कार कहते हैं, कैसे हाल चाल है? आप बहुत अच्छे बाद आए हमारे साथ।
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह का क्रम में आपकी पाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपके शो में जब भी एंट्री करता हूँ तब मुझे खुशी होती है, और आपके शो में जब मेरी एंट्री होती है तो बहुत बड़ी खुशी होती है। मुझे इतनी खुशी होती है कि सारे अपने का गम एक घंटे के अंदर खत्म होता है।
0: क्या बात है, अल्लाह ताला आपके सारे गम यूं ही खत्म कर दे और आप हमारे साथ हमेशा हमारे शो में आए, में बहुत अच्छा लगता है।
1: मेरी एक और ख्वाहिश है, अगर आप इस बात पर माइंड ना करें प्लीज, मैं वो बात आपसे चेक करूँ।
0: हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम।
1: मेरी दिल कहती है कि सर का प्रोग्राम रात को 10 बजे से 11 बजे तक होगा तो वेरी नाइस होगा।
0: हाँ इंशाल्लाह ताला, हमने प्रोग्राम जो है डिजाइन कर रहे हैं आजकल, अब देखते हैं कि मेरे हिस्से में कौन सा प्रोग्राम आने वाला है, तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं, जरूर आपके लिए कोई ना कोई अच्छा प्रोग्राम हम लेकर आएंगे जरूर।
1: आपकी कंपेरिंग सर, जितनी तारीफ करूँगी वो कम है।
0: थैंक यू।
1: जितने भी सुन रहे हैं उनको पता होगा कि आप आपसे लोग कितने प्यार करते हैं।
0: बिल्कुल, मेरे से वाकई बहुत से लोग प्यार करते हैं और मैं तमाम
1: लोगों को आपको चाहने वाले हजारों में।
0: बेशक बेशक, आप लोगों का प्यार है, आप लोग इतने दिल से इज्जत करते हैं, मैं बहुत खुश होता, तभी तो अभी तक बुढ़ा नहीं हो रहा। लोग कहते हैं बुढ़ा नहीं हो रहा, तुम 2005 से कर रहे हो प्रोग्राम, तो मैं कहता हूँ ये मेरे दोस्तों का प्यार है और मेरे लिसनर्स जो मुझे इतनी दुआएं देते हैं तो ये सब उनका असर है।
1: आपका जब मैं वही सुनता हूँ ना रेडियो पे, जब आप जुमे वाले दिन आते हैं तो कसम से इतनी मुझे खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। मैं कहता हूँ कि आज अगर मुझे सर होते हैं ना तो मैं सर के एफएम के स्टूडियो के अंदर होता।
0: हाय थैंक यू सो मच यार, आपका इतना प्यार, सच में बहुत मजा आता है आप लोगों, जब आप इतने प्यार से बात करते हैं और इतनी अच्छी ओब्लाइज करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है।
1: सर अगर एक बात और, मुझे सॉन्ग सुना, ये मुमताज मलाई का है, वेरी नाइस सॉन्ग है।
0: चलिए आप मुझे गाना सुनाए, लेकिन मैं आपको गाना डेडिकेट करूंगा, मेरे दिल से मेरी जिंदगी भर तेरा प्यार कम ना होगा, ये गाना आपको डेडिकेट कर रहा हूँ लास्ट में। आप मुझे मुमताज मलाई का गाना सुनाए। हेलो
1: सर,
0: आप मुझे मुमताज मलाई का गाना सुनाए।
1: सर वो मेरा गला तो खराब है, लेकिन मैं इसको थोड़ा टाइटल बताऊंगा।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप गाएं, मेरा भी गला खराब है, मेरी भी आवाज गंदी है, लेकिन मैं देखिए आपके साथ बात करता हूँ, आप भी मुझे सुनाए।
1: ना सर वो अगर आप मैं ना करें ना तो मेरा गला खराब है।
0: कोई बात नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, आप गाएं।
1: सर जितने सुन रहे हैं मैं सबको सलाम कहूंगा और गाने का कोई शौक नहीं है।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप जरूर सुनाइएगा गाना।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू इमदाद भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी हमारे साथ बहुत प्यारे से इमदाद अली शाह साहब, और अब हम प्ले करते हैं एक बहुत प्यारा सा गाना आपकी समातों की नजर करते हैं। एक बहुत ही प्यारे से दोस्त ने फरमाइश की थी और मुझे उनका नाम भूल गया है, उन्होंने कहा था मुझे जरूर गाना सुनवाइएगा, तो मैं बिल्कुल गाना सुना रहा हूँ आपको।
2: मेरे दिल से जिंदगी भर
0: तेरा प्यार करना होगा, इस गाने को सुनिए। अशफाक नियाज़ी को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, सुनते रहिए जी एफएम 88 नेटवर्क, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल एंड अल्लाह निगेबान।

सिंध असेंबली नवन सूबनि जी क़याम तोड़े नवनि यूनिट्स जे हवाले सां थींदड़ ॻाल्हियुनि ते बहस लाइ रिथ मंज़ूर करे वरिती। सिंध असेंबलीअ जो इजलास स्पीकर अवेस कादिर शाह जी सदारत हेठि थियो। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खोड़ो ऐवान में नवनि सूबनि बाबति थींदड़ बहस जे हवाले सां रिथ ऐवान में पेश कई, जेका मंज़ूर कई वई। स्पीकर अवेस कादिर शाह चयो त रिथ ते सूमर वारे ॾींहुं ॿ कलाक बहस कयो वेंदो। रिथ में चयो वियो आहे त पाकिस्तान में नवनि सूबनि ऐं यूनिटनि जे हवाले सां बहस थी रहियो आहे, जंहिंमें सिंध जे सरहदनि सां बि छेड़छेड़ वारा नुक़्ता शामिल आहिनि। मामूल जी कार्रवाई मुअत्तल करे हिन मामले ते बहस कई वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों त असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असा बार पेर पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण से बार जी इम्यूनिटी जका बेहतर थिए थी। हाने जका कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो डींदासी उन में का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जका पांजे बार के करायो तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुझी मर्ज में जो महफूज रहे।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाए बुड़ी 247-3-41-200।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
9: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 03125252786
5: जी हाँ 2315525786
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: अक्सर मां जो सवाल हूं असा सही पोलियो की वैक्सीन 10 साल तीन छोती डी वे तो जो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असाजी एरिया हाई रिस्क है ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके तो रेशो 10 साल के घट आ तेज कर असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे
2: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारी की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
7: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पार्लियामेंट पिम साने की शफाफ जांच करण जो मुतालबो करे छो। सेनेट ए कौमी असेंबली में खास कमेटी ठाण वो ठहराव मंजूर। अपोजिशन पारा साने की जांच लाय जोड़ियल हुकूमती कमेटी के रद्द करे छो। साने की जांच लाय अपोजिशन की सरबराही में हुकूमती कमेटी कायम करण जो भी मुतालबो। सेहत वाले वजीर मुस्तफा कमाल चयो तो पिम साने में मुलविस को भी शख्स न बचंदो। सभी ऑफिसर के लाइन हाजिर किया वेंदो। कोई को भी MNA या सेनेटर फोन न करे। अपोजिशन रोड मैप डे तारीखन ए कमेटियन ता मामले के महदूद न कयो वञे। कें बे साने खां बचण लाए मामले जो हल कढ़ियो वेंदो। इस्लामाबाद के पिम्स में पेश आयल साने की जांच जारी। वजीर आजम पारा जोड़ियल कमेटी पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बेन जा बयान कलमबंद करे वरता। फौती बारन के वारसन खां भी बयान वरता वया। जांच कमेटी वजीर आजम के अज शुरुआती रिपोर्ट पेश कंदी। कानून वाले वजीर आजम नजीर ताड़ चयो है तो जांच कमेटी अज शाम ताई शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम के पेश कंदी। तफसीली रिपोर्ट 7 दिन में सामू ईंदी। जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कई वेंदी। सिंध असेंबली नवन सूबन के क्याम तोड़े नवन यूनिट्स के हवाले से थन्दड़ गालन ते बहस लाय रित मंजूर करे वरती। सिंध असेंबली जो इजलास स्पीकर अवेस कादिर शाह की सदारत हेठ थो। पीपुल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ऐवान में नवन सूबन बाबत थन्दड़ बहस के हवाले से रित ऐवान में पेश कई जका मंजूर कई वही। स्पीकर अवेस कादिर शाह जो चवण हो तो रिथ ते सूमर वे डी ब कलाक बहस किया वो। रिथ में चो वो है तो पाकिस्तान में नवन सूबन ए यूनिट्स के हवाले से बहस थी रो है जैमें सिंध की सरहदों से भी छेड़छाड़ वा नुकता शामिल आन। मामूल की कार्रवाई मुअतल कर मामले से बहस किया वे।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्लाह ताला जी वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: ख़ुशख़बरी, ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331252578 6।
3: जी हा, 2315525786।
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर BFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलन

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

स्ट्रेंथ के हो तो आवाज भी स्ट्रेंथ की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, स्ट्रेंथ की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इन्वेस्टिगेट करें, मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इस वक्त जो कमेटी बनी हुई है। आप जरा फेरिस्ट देख लें, फेरिस्ट निकाल के देख लें कौन किसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसने सब एक दूसरे को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि तहकीक कर, नॉट ऑन दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ऑन। और ये वही गोल गोल वाला मामला नहीं होना चाहिए।
2: सब बच्चों की शहादत हुई है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसने स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसकी कोताही है, हर किसी एक आदमी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, किसी को भी इसको नहीं छोड़ा जाएगा। एक कमेटी बना ले MNAs और सेनेट के ऊपर।
3: पार्लियामेंट पिमस्तानी की शफाफ जांच करने जो मुतालबो करे छो। सेनेट ए कौमी असेंबली में खसूसी कमेटी ठाण वारा ठहराव मंजूर। अपोजिशन पारा साने की जांच लाइ जोड़ियल हुकूमती कमेटी के रद्द करे छो। साने की जांच लाइ अपोजिशन की सरबराही में हुकूमती कमेटी कायम करने जो मुतालबो। सेहत वाले वजीर मुस्तफा कमाल चो तो पिमस्ताने में मुलविस को भी शख्स न बचंदो, सभी ऑफिसरन के लाइन हाजिर कयो वेंदो, कोई को भी MNA या सेनेटर फोन न करे। अपोजिशन रोडमेप दे तारीखन ए कमेटियन ता मामले के महदूद न कयो वञे, मामले जो हल कढ़ियो वेंदो। इस्लामाबाद के पिम्स में पेश आयल साने की जांच जारी। वजीर आजम पारा जोड़ियल कमेटी पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बेन जा बयान कलमबंद करे वरता। फौती बारन के वारसन का भी बयान वरता वया। जांच कमेटी की शुरुआती रिपोर्ट पेश कंदी। कानून वाले वजीर आजम नजीर तारड़ चाहे तो जांच कमेटी अज शाम तई शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम के पेश कंदी। तफसीली रिपोर्ट 7 दिन में सामूं ईंदी। जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई भी थी।
4: Public importance addresses renewed public debate has emerged regarding the creation of new provinces and administrative units in Pakistan, including proposals and suggestions which may have the effect of also the existing territorial limits of the province of Sindh. The matters of public importance and must be discussed on the floor of the House. Business of the Assembly may be adjourned to take
5: this. Sir, you have 256 ke tahat rules relax karwa diye, lekin phir bhi Minister for Law and Parliamentary Affairs, whether the member has leave of the Assembly to make the adjournment motion.
3: सिंध असेंबली नवन सूबन की क्याम थोड़े नवन यूनिट्स के हवाले से थींदड़ गालन ते बहस लाए रथ मंजूर करे वरती। सिंध असेंबली जो इजलास स्पीकर अवेस कादिर शाह की सदारत हेठ थियो। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ऐवान में नवन सूबन बाबत थींदड़ बहस के हवाले से रिथ ऐवान में पेश कई, जका मंजूर कई वही। स्पीकर अवेस कादिर शाह चयो तो रिथ ते सूमर वाले डी ब कलाक बहस कयो वेंदो। रिथ में चयो वियो आहे तो पाकिस्तान में नवन सूबन ए यूनिट्स के हवाले से बहस थी रो आहे, जैमें सिंध की सरहदन सां भी छेड़छाड़ वारा नुक्ता शामिल आहिन। मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करे हिन मामले ते बहस कयो वञे।

0: भी पार्ट है।
1: सिंध असेंबली जा मेंबर सूमर वाले डी नवन सूबन के मामले ते ऐवान में बहस लाए तैयार। पीपुल्स पार्टी के एमक्यूएम के सिंध के विरांगे वो ख्वाब न दिसण की सलाह। सूबाई वजीर एमपीएस चयो त सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ एक न पर केतरा ही भेरा ठहराव मंजूर थी चुका आहिन। सिंध असेंबली एक भेरो बीहर वरी ठहराव मंजूर कर वठंदी। नंढड़े अस्पताल न संभाले सकंदड़ सूबो कि संभालींदा, नवन सूबन बाबत फैसलो अवाम जो हूंदो। पीपुल्स पार्टी अवाम सां गॾु आहे, सिंध विरहाइण जी ॻाल्हि कंदड़नि सां अवाम ई गॾु नाहे। एमक्यूएम जे दोस्तनि खे बि ठहराव जी हिमायत करणु घुर्जे। मुख़ालिफ़ धुर अॻवान अली कुर्शेदी चयो त हुननि जो पुराणो मुतालबो रहियो आहे त नवनि सूबनि जे मामले ते बहस थियणु घुर्जे, पर हाणे पीपुल्स पार्टी वारनि पाण बहस लाइ रिथ जमा कराई आहे। गवर्नेंस खे बहितर बणाइण लाइ इंतज़ामी यूनिट्स ॾांहुं वञणो पवंदो। तहरीक इंसाफ़ जे मेंबर सजाद सूमरे चयो त नवनि सूबनि जी मुख़ालफ़त कंदे चयो त पहिरियां अवाम जा मसला हल करे ॾेखारियो, पोइ सूबनि जी ॻाल्हि कयो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
7: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842।
0: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूनिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
0: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे
10: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0371800-3920
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
8: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
10: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
8: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
10: 0331-2525-786
8: जी हा 3131-2525-786
10: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
0: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राति जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।